बिल्कुल दोस्तों, प्रेम की गंगा बहाना बहुत ज़रूरी है। और ये गीत आपने अभी सुना मुकेश की आवाज़ में फिल्म संत ज्ञानेश्वर से। और दोस्तों, ज़िंदगी हमें कई बेहतरीन दोस्त दे सकती है, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमें बेहतरीन ज़िंदगी दे देते हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दोस्ती से ये गीत।

दोस्तों, हम सब यहाँ पर एक मुसाफिर की तरह हैं। कब सफ़र ख़त्म हो जाएगा और कब हम चल पड़ेंगे, ये सिर्फ प्रभु ही जानता है। आइए सुनते हैं परिचय फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म पैगाम से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार। वंदन वार
1: ये है विविध भारती।

कहा है कि मन ही इंसान को ज्ञानी अज्ञानी सुखी या गुलाम बनाता है। बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। मन एक खेत या मंदिर की तरह है, जहां आप जैसे विचार रूपी बीज बोएंगे वैसी ही फसल या जीवन का सत्य प्राप्त होगा। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 327। संगीत सरता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। स्वर मंडल और मासुरी वादक अरविंद गजेंद्र गटकर को आप सुनेंगे, प्रस्तुति छाया गांगुली। सात बजे भूले बिसरेगे 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनिए त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर नेहा अगरकर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक।

सुबह और रात 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर, आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले। दिन में 10 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे अभिनेता शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। 11 कार्यक्रम रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल। बजे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नग में, 3 कार्यक्रम सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 पिटारा में सुने आज के मेहमान साहित्यकार लेखक मनोज रूपड़ा से ममता सिंह की बातचीत, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 छाए गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर तराने नए पुराने हमारा दैनिक कार्यक्रम। 6:35 पर संध्या रजन। 7 जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। रात 8 हवा महल में सुनिए प्रहसन, महीने की आखिरी तारीख। लेखन SI इशरत और निर्देशन मुख्तार अहमद। आठ पर चित्रलोक। 9 आपके लिए। रात 10 छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 327।

विभीषण से कुंभकर्ण के युद्धभूमि में आने के समाचार ने वानर सेना को उद्वेलित कर दिया। दांत किटकिटाते हुए वानरों ने शिलाखंड और वृक्ष उखाड़कर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, पर इसका कोई प्रभाव न हुआ।

होता देख हनुमान ने घूंसे से जो प्रहार किया तो कुंभकर्ण धरती पर आ गिरा। उठकर उसने जो घूंसा मारा तो हनुमान धरती पर थे। फिर तो नील नल समेत कई अन्य योद्धाओं को उसने धूल चटा दी। वानर सेना को भागते देख उसने अंगद, सुग्रीव आदि को अपनी कांख में दबा लिया। पार्वती को युद्ध वर्णन सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हनुमान संभल कर एक बार फिर उठे और सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा भी टूटी और मृतक का स्वांग करके वो कुंभकर्ण की कांख से फिसल निकले। फिसल कर निकलते हुए उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। घोर गर्जन करते हुए जैसे ही सुग्रीव आकाश की ओर उड़े कि कुंभकर्ण ने उनके पैर पकड़कर उन्हें धरती पर दे मारा। सुग्रीव संभल कर उठे और कुंभकर्ण पर फिर प्रहार किया। नाक कान कट जाने का बोध होते ही कुंभकर्ण का मन क्रोध और ग्लानी से भर गया। कानों और नाक के बिना उसका अत्यंत भयकारी रूप देखकर वानर सेना आतंकित हो गई। काल के समान बढ़ते आ रहे कुंभकर्ण ने करोड़ों वानरों को अपना ग्रास बना लिया और उतनी ही संख्या में उन्हें कुचल मसल डाला।

0: संगीत सरिता।
1: नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है विविध भारती के खजाने से। आज हम एक ऐसी भेंट वार्ता चुन लाए हैं, मतलब वर्ष 1985 की संगीत सरिता की उद्घोषणाओं के साथ सुनते हैं ये बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: ये विविध भारती है। आज संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक श्री अरविंद गजेंद्र गढ़कर से ली गई भेंट वार्ता सुनिए। भेंट कर रहे हैं के शैलेंद्र।

0: श्रोताओं, आपने इस तारवाद्य की झनकार सुनी और उसके साथ साथ वंशी की मधुर आवाज पेंगे लगा रही थी। जाहिर है आज हम एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवा रहे हैं जिनका इन दोनों साजों से विशेष संबंध है। ये जो तारवाद्य था स्वरमंडल और वंशी तो आप जानते ही हैं, और ये कलाकार नहीं बल्कि हम इन्हें साधक कहेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, संगीत साहित्य और शिक्षा की त्रिवेणी जिसके जीवन को निखारती पखारती रही है, वो कलाकार आज आपके बीच होंगे और उनका नाम है अरविंद गजेंद्र गडकर। आइए अरविंद जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: अरविंद भाई जी। सबसे पहले जी श्रोताओं को हम आपके स्वरमंडल के बारे में ही कुछ बताएं, आप इन्हें बताइए।
1: बात ऐसी है कि स्वरमंडल तो ये संगत का साज है, सब जानते हैं, गाने वाले संगत के लिए इस साज को इस्तेमाल करते हैं।
0: लेकिन हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है
1: जी,
0: आपने इसे एक नया आयाम दिया है
1: जी। हाँ।
0: आपने इसे नए ढंग से सोलो में प्रयोग में लाया है आप
1: जी।
0: तो उसके बारे में आप बताइए ना कुछ।
1: बात ऐसी हुई कि 30 साल पहले मैंने जब इस साज को सुना, ऐसे ही छेड़ते, बड़े गुलाम अली खान साहब छेड़ते थे इसको, तो मुझे लगा कि इसमें पोटेंशियलिटी इतनी है कि क्यों नहीं इसको डेवलप किया जाए कि एक स्वतंत्र रूप में, सोलो के रूप में। तो मैं इसके पीछे पड़ा, तो फिर पहले तो चलते रहा कि इस पे बजाए क्या, आखिर एक बार छेड़ दिया तो खत्म हो गया, फिर क्या करें आगे। तो मैंने सोचा कि दोनों हाथ पियानो की तरह अलग अलग चलाएं। देखिए ऐसे, एक ये हाथ।

0: वाह, कैसा लगा?
1: इतने सारे तारों को नियंत्रित ढंग से एक उंगली के कमाल से बजाकर रखना। अच्छा, इसमें तार कितने होते हैं?
0: 36।
1: अच्छा,
0: अब इस पे तो मीण निकल नहीं सकती।
1: हाँ,
0: तो इस पर हमने प्रयास किया है कि मीण निकालें। देखिए, प्रयास है, प्रयोग है।
1: वाह, आपने इसमें सितार का भी सम्मिश्रण कर दिया है।
0: जी हाँ।
1: वाह। अच्छा, ये एक बात श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी रुचि संगीत में कैसे हुई शुरू से?
0: बात ऐसे, वो तो एक इत्तेफाक की बात है, एक्सीडेंट था वो, कि मैं भूसा मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था
1: जी,
0: और वहाँ बैंड मास्टर जो हमारे थे वो एक बैंड पर धुन बिठा रहे थे। और तो एक दिन क्या हुआ कि वो बंसी बजाने वाला जो लड़का था वो आया ही नहीं, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तू बजाएगा जरूर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा तुझ में वो गुण है, संगीत की कुछ रुचि है तू, और तुम्हें गिफ्ट है, तो ये बंसी ले लो और घर जाके रियाज करो और कल जा आके ये धुन बजा।
1: अच्छा, तो सबसे पहले मतलब वंशी से शुरुआत किया?
0: जी हाँ जी हाँ।
1: और वंशी के बाद फिर तब आपने स्वरमंडल?
0: स्वरमंडल तो मैं 31 साल है, वंशी तो मेरे बचपन से, यानी समझे कि 47 साल से मैं बंसी बजा रहा हूँ।
1: अच्छा
0: जी हाँ। और शुरू शुरू में तो यहाँ जो DML ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे दिनकर राव आमिम्बल, उनके स्टाइल में कॉपी करता था। उसके बाद पन्ना बाबू, पन्ना लाल जी घोष, उनसे थोड़ा सा सीखा। और मेरे असली गुरु तो मथुरा के मुरलीधर शास्त्री हैं।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे संगीत में कर्नाटक शैली और हिंदुस्तानी दोनों का मुझे ज्ञान दिया।
1: मतलब संगीत का सफर आपका काफी पुराना है।
0: जी हाँ,
1: बचपन से आप इसमें साधना करते रहे हैं।
0: जी हाँ, जी।
1: अच्छा, एक और बात
0: जी,
1: कि आप शिक्षा में भी डिग्रियां काफी हैं आपको, और वो भी कुछ ऐसी डिग्रियां हैं जिनका विशेष रूप से लोग कहते हैं संगीत के साथ सामंजस्य नहीं होता, जैसे आप साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, तो ये सारी डिग्रियां और उसके साथ साथ संगीत की साधना, ये दोनों का मेल कैसे कर पाए आप?
0: अब देखिए, मैं फिजिक्स के तरफ आकर्षित हुआ साउंड जानने के लिए, कि म्यूजिक तो साउंड की दुनिया है,
1: मतलब संगीत में भी जो विज्ञान का पक्ष है।
0: हाँ, तो फिर उसके बाद आपके मानसिक स्तर पर उसका परिणाम होता है, तो साइकोलॉजी में हमने एमए कर दिया। फिर पढ़ाना अच्छा चाहिए, तो इसलिए मैंने एजुकेशन की एक डिग्री ले ली, की चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी करके बैचलर ऑफ एजुकेशन भी हो गए।
1: मतलब संगीत का मंथन आपने हर तरह से करने की कोशिश की ताकि उसमें से जितने भी रत्न निकाले जा सकते हैं वो कर लिया जाए। अच्छा, जब इतनी सारी विधाएं और इतने सारे पक्षों में आप बटे हुए हैं, तो संगीत के लिए रियाज का वक्त कैसे निकालते हैं?
0: देखिए, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं अपने को
1: जी,
0: है ना, उसमें से 8 घंटा आप रेस्ट ले और कुछ करें, 16 घंटे तो पड़े हैं। अगर हर मिनट आप अगर उसके तरफ लगाएं आपकी जो चीज है, तो आपको बहुत कुछ आ सकता है।
1: अच्छा, और संगीत रचना में
0: जी,
1: तो जाहिर है कि आपने काफी योगदान दिया होगा।
0: जी हाँ,
1: तो उस बारे में कुछ बताइए।
0: ऑल इंडिया रेडियो में मैं प्रोड्यूसर था।
1: अच्छा।
0: तो फिर लाइट म्यूजिक और क्लासिकल दोनों देखता था, तो फिर वहाँ ऑपेराज करना, संगीत रूपक करना, फिर हर महीने का गीत, ये सब मैं करता
1: था। ख्याल है काफी वर्षों तक आपने आकाशवाणी में भी सेवा की है।
0: 20 साल, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आकाशवाणी की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखना है मुझे।
1: अच्छा, ये संगीत के साथ साहित्य एक और पक्ष है जिसमें भी काफी लोकप्रिय हैं आप, और आपने काफी उसमें नाम भी पाया है।
0: मैंने
1: तो साहित्य को आप अपने संगीत से और विज्ञान से कैसे?
0: क्या हुआ कि जब संगीत मेरा प्रोफेशन बन गया तो कुछ आउटलेट मुझे चाहिए था एनर्जी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ह्यूमरस स्टोरीज पहले लिखता रहा
1: जी,
0: फिर संगीत समीक्षा, फिर किसी ने कहा कि आप नॉवेल लिख के देखिए, तो वो भी लिखी, तो 10 नॉवेल्स लिख दी मैंने, और आजकल एक बड़े नॉवेल पे मैं काम कर रहा हूँ।
1: अच्छा, संगीत से संबंधित कोई किताब आपने लिखी?
0: जी हाँ, स्वरांचा बनात। अच्छा। बड़ी हाँ, बड़ी अच्छी किताब,
1: मराठी में।
0: जी हाँ, वो लोगों को बहुत पसंद आई।
1: अच्छा, आप तो देश के अलावा विदेशों में भी काफी भ्रमण कर चुके हैं, क्या कुछ विदेशों की अपनी अनुभूति बताइए।
0: हाँ जी, टोक्यो यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया टॉक्स के लिए
1: जी,
0: हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन म्यूजिक, तो वहाँ मैं गया था। तो फिर मैंने कहा कि फिर चलो हांगकांग चलें, मलेशिया, बैंकॉक वगैरह वगैरह, तो बहुत से देश घूम के आया। तो मैंने ये देखा कि स्वरमंडल और बंसी दोनों का वहाँ बहुत प्रभाव।
1: अच्छा, विदेश में लोग काफी पसंद करते हैं इसको,
0: और स्पेशली स्वरमंडल तो बहुत ही लोगों को पसंद आता है।
1: अच्छा
0: जी हाँ, शुक्रिया।
1: अच्छा, अब श्रोताओं को कुछ सुनाएं?
0: जरूर सुनिए।

0: वाह, अच्छा तो हम श्रोताओं से विदा लें, और पहले हम श्रोताओं की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने प्रसिद्ध स्वर मंडल और बांसुरी वादक अरविंद गजेंद्र गडकर से भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रहे थे के. शैलेंद्र।
3: और अब सुनते हैं अरविंद गजेंद्र गडकर की बांसुरी पर।

बांसुरी पर पहाड़ी धुन आप सुन रहे थे। कलाकार थे अरविंद गजेंद्र कड़कर। आज विविध भारती के खजाने से हम ले आए थे उनके साथ की गई के शैलेंद्र की बातचीत। और अब इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल श्रोताओं, महाकाल वंदन के इस अध्याय में आइए प्रातः वंदन करते हैं कालों के काल महाकाल का। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूचना देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनेगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर सुनिए उज्जैनी आरजे। सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स व सुबह 10:00 सुनिए कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। सुबह 10:30 पर सुनिए सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा व 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। दोपहर 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल व दोपहर 1:00 सुनिए सुरीला सफर विविध भारती मुंबई से।

三点。शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत, शाम 7:21 पर सुनिए कार्यक्रम माटीरी बात। रात 8 सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा व 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 9:30 पर सुनिए चर्चा का विषय है दिल्ली से रिले होगा व 10 सुनिए 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। रात 10:20 पर सुनिए आपकी फरमाइश या भोपाल कार्यक्रम व 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम राग रजनी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 11:10 से सुनिए एफएम गोल्ड के कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये था हमारा आज का कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को दी मंजूरी। अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर भोपाल में गोपालक सम्मेलन में होंगे शामिल। और इंदौर, भोपाल और उज्जैन को केंद्र सरकार की प्रगति 50 पहल के तहत देश के 50 मॉडल शहरों में शामिल किया गया। अब समाचार विस्तार से। एशियाई गेम्स में महिलाओं की ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 दशक से ज्यादा समय बाद इस स्पर्धा में भारत को पदक मिला है, जो यादगार उपलब्धि है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बड़ी राशि

0: मंजूर हुई जिसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अगले 5 साल में 5,329 करोड़ और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,245 करोड़ से ज्यादा राशि शामिल है। वहीं युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
1: अग्निवीरों को आरक्षण देकर के युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसमें वन विभाग के आरक्षक, इसके अलावा गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल के प्रहरी तथा आबकारी के आरक्षक, इन पांचों विभागों में 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह एक मध्यप्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत है और मैं ऐसा मानता हूं कि यह युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने के साथ वे न्याय संहिता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद भौरी के पास IISER परिसर का शिलान्यास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उज्जैन में 255 करोड़ रूपये के डेयरी प्लांट सहित दुग्ध संयंत्र और गुणवत्ता जांच लैब जैसी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान 2026 को प्रदेश में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कल अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे भी रचनात्मक कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिए। अभियान के तहत अब तक 3,87,00,000 से ज्यादा दीप जलाए गए हैं, जबकि चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु, 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा और 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरों के नशे के हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाने और हर जिले में हर महीने नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और आबकारी विभाग को जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के तहत कल मतदान संपन्न हुआ। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 75.96% और पंचायत उपचुनाव में 56.62% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में 4,235 पदों पर उपचुनाव होना था, जिनमें से 604 पदों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष, 4 पंच और 79 सरपंच और 5 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ। इन चुनावों की मतगणना 3 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि पंच और जिला पंचायत सदस्य के नतीजे 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके नजदीक ही दिलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा शिविर लगेंगे। इन शिविरों में राजस्व सेवाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन को केंद्र सरकार की प्रगति 50 पहल के तहत मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इन शहरों में स्वच्छता, सैनिटेशन और ठोस तरल कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तीनों शहरों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में काम किया जाएगा। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ को देखते हुए शिप्रा नदी, घाटों और सार्वजनिक सुविधाओं की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहेगा। नई दिल्ली में YouTube इम्पैक्ट समिट में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने क्रिएटर इकॉनमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि AI

रचनाकारों का विकल्प नहीं बल्कि उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने का साधन बनना चाहिए और इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। श्री मुर्गन ने युवा रचनाकारों से भारतीय भाषाओं, संस्कृति और कहानियों को डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की भी अपील की। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश बीज संघ को अमूल, इफको और क्रिभको की तर्ज पर मजबूत सहकारी संस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 5 साल में बीज संघ को देश के प्रमुख बीज संस्थानों में शामिल करने के लिए उत्पादन, अनुसंधान, तकनीक और मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की हर विधानसभा में अब सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जहां बच्चों और युवाओं को कई खेलों के साथ फिटनेस और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी मिलेंगी। एशियन गेम्स में प्रदेश की राज्य शूटिंग अकादमी की नीरू डाडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया और इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। वहीं राज्य एथलेटिक्स अकादमी के देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 5.50 मीटर की छलांग लगाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। हालांकि वे 7वें स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा में कुलदीप कुमार 5.35 मीटर के साथ 10वें स्थान पर रहे। और अब बात मौसम की। प्रदेश से इसी हफ्ते मानसून की विदाई शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मानसून लौटेगा, इसके बाद इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग से भी इसकी वापसी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। वहीं 3 अक्टूबर तक प्रदेश से बारिश के बादल पूरी तरह छट जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वडनगर से वाराणसी जा रही सेवा संकल्प यात्रा के तहत मंडला पहुंची बाइकर्स यात्रा का ग्राम चारकी में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। कटनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल निर्वाचन सदन पहुंचकर ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय शिवपुरी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में साइन लैंग्वेज वेक के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ईडीआर सेंटर में अनुगूंज से उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने कल सुबह खंडवा रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में कल जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा साइन लैंग्वेज वीक के अवसर पर अनुगूंज से उद्घोष विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात श्रोताओं, जय श्री महाकाल। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति। लेकर आई हूँ आपके लिए सुबह का ये खूबसूरत सफर सुप्रभात उज्जैन। सुबह की ताजी हवा और चाय की चुस्की के साथ आज हम बात करेंगे अपने शहर और उसके विकास से जुड़ी कुछ खास और सकारात्मक विषयों की। आज के हमारे विषय हैं, आज के सफर में बात होगी विकसित होते उज्जैन की, समाचार पत्र में हम सुनेंगे अपने शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें, इसी के साथ सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान पर भी बात होगी और बात होगी त्योहार और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों की, और आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इस पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सुबह है नई उम्मीदों की और आज का दिन है कुछ अच्छा जानने का, कुछ अच्छा सुनने का। चलिए इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं और इस सफर को शुरू से सजाते हैं। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत हम दिल दे चुके सनम से, जिसे गाया है उस्ताद सुल्तान खान और कविता कृष्णमूर्ति ने।

आप सभी का फिर से स्वागत है FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर और आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। श्रोताओं, उज्जैन आज सिर्फ धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक मॉडर्न शहर भी बन रहा है। महाकाल लोक के बाद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी है, जिसका असर पर्यटन, व्यापार और रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। शहर की सड़कें, लाइट, ड्रेनेज, घाटों की सफाई, बिजली, हरियाली, स्वच्छता, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। यानी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उज्जैन एक स्मार्ट और व्यवस्थित शहर की ओर बढ़ रहा है। उज्जैन की तरक्की की इन बातों के साथ अब माहौल में घोलते हैं थोड़ी सी संगीत की मिठास, सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी की आवाज में।

आप सभी का फिर से स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। आइए अब बारी है समाचार पत्र की, जिसमें हम जानेंगे हमारे शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें। तो शुरुआत करते हैं सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर। सिंहस्थ 2028 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिसिटी, फोर लेन सड़कें, नए ओवरब्रिज और नदियों की सफाई से जुड़ी परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। अब बात करते हैं मेडिसिटी परियोजना की। मेडिसिटी परियोजना के तहत 550 बेड का नया आधुनिक अस्पताल भवन और 70 ICU वार्ड बनाए जा रहे हैं। इस अस्पताल के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज की 150 सीटें भी बढ़ जाएंगी। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का 63% काम पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं मक्सी रोड फोर लेन निर्माण की। उज्जैन से मक्सी तक बनाए जा रहे नए फोर लेन मार्ग का जमीनी अर्थवर्क पूरा कर लिया गया है। अब बात फ्रीगंज नया ब्रिज नेटवर्क की। शहर में ट्रैफिक के दबाव से निपटने के लिए पुराने शहर को फ्रीगंज से जोड़ने वाला नया ब्रिज बनाया जा रहा है। चामुंडा माता चौराहे से इंदिरा गांधी चौराहे तक बन रहे इस ब्रिज का निर्माण कार्य 1 साल में 70% तक पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की। महानंदा नगर स्थित स्पोर्ट्स एरिना में उच्च विभाग शिक्षा विभाग की संभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन माधव महाविद्यालय द्वारा किया गया। इस स्पर्धा के संभाग के 7 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसके फाइनल मुकाबले में उज्जैन जिले की टीम ने रतलाम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल नव युवक मंडल द्वारा 2 अक्टूबर को गोला मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। मंडल अध्यक्ष इंद्रेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में नेत्र परीक्षण, मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण जांच तथा मधुमेह व उच्च रक्तचाप से प्रभावित मरीजों के लिए रेटिना की जांच की सुविधा निशुल्क रहेगी। अब खबर बैडमिंटन खिलाड़ी अंकित का राज्य स्तरीय चयन। उज्जैन में आयोजित संभागीय बैडमिंटन स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर साइंस कॉलेज के छात्र अंकित गुप्ता का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अंकित की इस उपलब्धि पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरीश व्यास जी ने क्रीड़ा अधिकारी संजीत रायसर और कोच योगेश बंदेवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश की विभूतियों पर केंद्रित होगा कालिदास समारोह। भोपाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता उज्जैन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कालिदास समारोह की केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 21 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय कालिदास समारोह में कवि प्रदीप, श्री कृष्ण सरल, शिव मंगल सिंह सुमन और शरद जोशी जैसी प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालय माधव नगर में अखिल भारतीय संजा लोकोत्सव के 3रे दिन संजा और मांडना प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस आयोजन में लगभग 180 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गोबर से सुंदर संजा उकेरी। मालवी बोली और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बिना झिझक मालवी भाषा बोलने की शपथ भी ली। तो ये थी हमारे शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें। अब माहौल को थोड़ा म्यूजिकल करते हैं, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म अखियों के झरोकों से हेमलता की मधुर आवाज में।

0: पानी की हर बूंद है अनमोल,
1: बहने ना दें इसे बेमोल।
0: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
2: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति। श्रोताओं, अब बात सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान की। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा अभियान जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा, इन 3 दिनों यानी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान उज्जैन नगर निगम और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा महाकाल, महालोक, प्रमुख चौराहों और शिप्रा घाटों पर बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सकारात्मक खबर के बाद आइए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और मनमोहक गीत फिल्म सागर से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई जरा देख के

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। श्रोताओं, अब बात त्योहार और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों की। त्योहारों के इस सीजन को देखते हुए होटल श्री गंगा व अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय कला, पारंपरिक परिधान और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए फैशन और लाइफस्टाइल प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मालवा की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस अच्छी पहल के बाद क्यों ना माहौल को एक प्यारे से गीत से और भी खुशनुमा बना दे, तो आइए सुनते हैं फिल्म मधुमती का ये गाना लता मंगेशकर की मधुर आवाज में।

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन और मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रीति। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। यह दिन भाषा विशेषज्ञों और अनुवादकों के कार्यों को सम्मानित करने तथा अलग अलग संस्कृतियों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए विशेष माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यह भाषा और अनुवाद के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ना ही इस दिन का महत्व है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपकी सुबह को और भी सुरीला बना देगा, फिल्म कलाकार से किशोर कुमार की आवाज में।

आज के इस सफर में हमने जाना कि हमारा उज्जैन विकास, स्वच्छता और बेहतर सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन, FM 102.5 MHz पर। यह है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक सौनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी

0: केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
3: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। Expert@AIR News Hindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई

0: सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नौवीं के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers' meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's Biannual Commanders Conference 2026 in New Delhi, Mr. Singh said that the developments reflected the growing maturity of India's domestic naval shipbuilding ecosystem, underlining the Navy's efforts towards achieving self-reliance in the defence sector. The Defence Minister emphasised that the Indian Navy's warship production ecosystem is now meeting global benchmarks. He said the warships commissioned recently contain over 75% indigenous content. The minister called for a significant upgrade of India's maritime surveillance architecture, recognizing the importance of existing systems. He added that the growing volume and complexity of maritime traffic require enhanced analytical capabilities. Highlighting the government's commitment to the modernization of the Navy under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, Mr. Singh stated that the Indian Navy serves as a strategic anchor in the vision of Viksit Bharat 2047. The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. The camps will continue today as well. The EC said that block level officers or BLOs present

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? स्वागत है आप सभी का उज्जैनी आरजे में और मैं हूँ आपकी अपनी आवाज़, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी आरजे प्रीति। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नेशनल फिल्म अवार्ड्स और जीवन में पुरस्कार का महत्व। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का समारोह गुजरात के एकता नगर में आयोजित हुआ। खास बात यह रही कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का यह समारोह पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की पृष्ठभूमि में विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने फिल्म जगत से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक पदार्थों का प्रचार न करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने यह कहा कि लोकप्रिय कलाकार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो आज हम बात करेंगे उन कलाकारों की, उन फिल्मों की जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, और फिर बात करेंगे अपनी जिंदगी की, क्योंकि पुरस्कार सिर्फ फिल्मी सितारों को ही नहीं मिलते, हमारी छोटी बड़ी उपलब्धियां भी सम्मान होते हैं, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह खूबसूरत सफर शुरू करते हैं संगीत के साथ। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिससे सफर और भी सुहाना हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इस गीत की ओर, फिल्म एमएस धोनी से अरमान मलिक की आवाज में।

वेलकम बैक टू उज्जैनी आरजे एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन। दोस्तों अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात हो और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार भारतीय सिनेमा में लंबे और उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने भी उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई दी है। इसी समारोह में श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक कलाकार का सफर सिर्फ एक फिल्म या एक किरदार से नहीं बनता है, उसके पीछे होते हैं वर्षों के अनुभव, लगातार मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण। अनंत नाग का सम्मान हमें यही याद दिलाता है कि लंबे समय तक ईमानदारी से किया गया काम अपनी पहचान जरूर बनाता है। और अब जब बात हो रही है एक खूबसूरत लंबे सफर की, तो उस सफर में संगीत का साथ हो जाए। सुनते हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, अब बात उस फिल्म की जिसने इस बार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। आर्टिकल 370 को इस श्रेणी में सम्मान मिला। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने किसी फिल्म को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री का योगदान नहीं होता, लेखक, निर्देशक, कैमरा टीम, संगीत, एडिटिंग और पूरी तकनीकी टीम मिलकर एक कहानी को पर्दे पर उतारती है। इसीलिए एक फिल्म को मिलने वाला पुरस्कार अक्सर पूरी टीम की मेहनत का सम्मान होता है। तो दोस्तों, टीम वर्क की बात हो रही है तो अब क्यों ना एक ऐसा गीत सुना जाए जिसको सुनते ही आप भी कुछ देर के लिए अपनी ही दुनिया में खो जाए। तो सुनते हैं फिल्म परदेश का ये गीत सोनू निगम की आवाज में।

फिर से स्वागत है आप सभी का FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर और आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे। दोस्तों अब बात करते हैं अभिनय की। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला। किसी किरदार को पर्दे पर जीवंत करना ही सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, उसके भाव, उसकी कहानी, उसकी पूरी दुनिया को समझना पड़ता है। दोस्तों जब किसी कलाकार के इस काम को राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो वह सम्मान सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होता बल्कि वर्षों की मेहनत की एक खूबसूरत याद बन जाता है। और अब जब अभिनय की गंभीर बात हो रही है तो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, क्योंकि संगीत में वो ताकत होती है जो माहौल को बदल दे। सुनते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म से राघव और वरुण जैन और सचिन जिगर की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, अब बारी हमारे हीरो यानी अभिनेता की। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान संयुक्त रूप से कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला है। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्म युगम में उनके अभिनय के लिए यह सम्मान दिया गया है। दो अलग अलग कलाकार, दो अलग अलग फिल्में और दो बिल्कुल अलग किरदार, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर एक जैसा सम्मान। यही सिनेमा की खूबसूरती है कि हर कलाकार अपनी अलग अलग शैली और अपनी अलग पहचान लेकर आता है। और अब एक ऐसा गीत जो शायद आपको किसी फिल्म का किरदार या किसी खूबसूरत याद से जोड़ दे, तो संगीत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं फिल्म हक से ये खूबसूरत गाना विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की आवाज़ में।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, अब कैमरे के सामने से थोड़ा पीछे चलते हैं उस व्यक्ति की ओर जो पूरी कहानी को दिशा देता है, निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। निर्देशक की भूमिका सिर्फ कलाकारों को दिशा देने तक सीमित नहीं होती, कहानी को पर्दे पर किस तरह पेश करना है, उसका पूरा विजुअल ट्रीटमेंट और फिल्म की रचनात्मक दिशा, इन सब में निर्देशक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए यह पुरस्कार हमें पर्दे के पीछे काम करने वाले उस हुनर को याद दिलाता है जो पूरी कहानी को एक रूप देता है। और अब पर्दे के पीछे की बातों से निकलकर वापस आते हैं पर्दे पर एक खूबसूरत गीत के साथ। सुनते हैं फिल्म कपूर एंड संस से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने, ये गाना।

आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर उज्जैनी आरजे और आपके साथ सफर जारी है आरजे प्रीति का। तो दोस्तों, किसी नई फील्ड में पहली बार कदम रखना अपने आप में एक चुनौती होती है और जब उसी शुरुआत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाए तो वह पल खास बन जाता है। रणदीप हुड्डा को फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का अवार्ड मिला। यह हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाता है कि नई शुरुआत करने के लिए हमेशा सही समय का इंतजार करना नहीं होता, कभी कभी पहला कदम ही आगे की पूरी यात्रा का रास्ता खोल देता है। तो नई शुरुआत की इस खूबसूरत बात के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म जहर से श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: चुचु चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचु रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे, आरजे प्रीति के साथ। उज्जैनी आरजे में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिलने वाले कलाकारों की। अब बात पर्दे के पीछे के हुनर की, संगीत और तकनीकी क्षेत्र से। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिनका काम हमें स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संगीत, गीत, कोरियोग्राफी, साउंड, स्क्रीन प्ले और कई तकनीकी क्षेत्रों में भी कलाकारों और तकनीशियनों को सम्मान दिया जाता है। पुष्पा, द रूल 2, स्त्री 2, भूल भुलैया 3, मैदान और अमरन जैसी फिल्मों ने अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार हासिल किए हैं। यानी फिल्म सिर्फ अभिनेता या अभिनेत्री से नहीं बनती, कैमरे के पीछे काम करने वाले हर व्यक्ति का अपना हुनर होता है। हर चमकते पर्दे के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। और अब जब बात संगीत की निकली ही है तो संगीत सुने बिना कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो आइए सुनते हैं एक और खूब

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। गायक और संगीतकार हरिहरन की आवाज में समाप्त कीजिए खुमार बारा बनकवी का ये कलाम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए तलत अजीज की आवाज में, मौसकी है फिदा हुसैन की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: धनक घटा कलियां और तारी हैं तेरे रूप, गजलें हो या गीत मेरे सब में तेरा रूप। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में, शायर हैं कतील शिफाई।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

साथियों, कार्यक्रम की अगली गैर फिल्मी रचना सुनिए गायक और संगीतकार लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए अनामिका की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन फर्नांडिस का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: कार्यक्रम में अगली आवाज है अदनान समी की, गीतकार है समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला एल्बम सॉन्ग है अलीशा चुनौई की आवाज में। गीत है शाम, अनुरागी का, संगीत है बिद्दू का। एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं ललित सेन।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: सपना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
5: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
4: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम का अगला शानदार गीत है शान और श्रेया घोषाल की मिली जुली आवाजों में। गीत रचना सुआनंद किरकिरे की, संगीत है शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम है पीके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अगला गीत सुनिए शान की आवाज में। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है झनकार बीट्स।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आज यादों की महफिल सजी थी मशहूर गायक शान के शानदार गीतों से। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको याद दिला दे क्या है आज की इबारत। उसके दामन की खुशबू, उसके कदमों की आहट फजाओं में है, तो भी देखो ना मन नहीं जागे पीछे सपनों के भागे। और जिया में चमके जैसे कोई अंगारा, कुछ ना पूछो दिल का हाल बुरा होता है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं तो सीने में क्यों झनकार हुई। दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं प्रेम की पुकारें, ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। चाहत का है हर सू असर, चलती हूं मैं तारों पर, और उसका बस चले तो वो दौड़ के आएगा। ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, अपने संदेश आसान सरल भाषा और कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें। वैसे आपको पता है आज की खास बात ये है कि जो हम आपसे पूछना चाहते थे वो ज्यादातर बातें आप पहले ही लिख चुके हैं, पर हम फिर भी आपसे पूछते रहेंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज का ये सुरीला सफर हम तय करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को याद करते हुए और उनकी फिल्मों के गीतों को सुनते हुए। 30 सितंबर 1922 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उन्हें हिंदी फिल्मों में मिडल ऑफ द रोड माना जाता था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और कुछ समय तक गणित और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन भी किया था। उन्हें प्यार से ऋषिदा कहा जाता है और इसके आगे की बातें अब आप हमें बताएंगे। तो साथियों, आज बातें होंगी ऋषिदा की फिल्मों की। उनकी फिल्मों की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी फिल्मों के नाम हमें बताएं और ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों से क्या मैसेज देते थे हमें वो भी बताएं, और उनकी फिल्मों में जो कॉमन सिचुएशन दिखाई जाती थी, जो हास्य की जो सिचुएशन होती थी, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ था वो भी बताएं। और ऋषिदा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कौन सी थी और भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और ये भी बताएं कि इस वक्त आपको ऋषिदा की कौन सी फिल्में और गीत याद आ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में हम और आगे बढ़ जाते हैं।

आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, ऋषि दा की फिल्मों की खासियत और उनकी फिल्मों के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित क्लासिक हिंदी फिल्म अनुपमा एक शांत, गहरे भावनात्मक जुड़ाव और पिता पुत्री के रिश्तों की कहानी, तो हमें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी लिखकर भेज दें और इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला था वो भी बता दें और इस गीत में आवाज, गीत, संगीत किसका है वो भी बता दें और साथ में ये भी बताएं कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसको लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी ने। बाकी चीजें तो आप हमें बताने वाले हैं।

0: अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।

0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
1: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं जो इस तरह से हैं। धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, तरुण बोस, शशिकला, देवन वर्मा और सुरेखा पंडित। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था और इस गीत को लिखा था मशहूर शायर कैफी आजमी ने, संगीत था हेमंत कुमार का और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था अनुपमा। और अब पढ़ लेते हैं हमारे साथियों के कुछ संदेश। संदेशी हमारे एक साथी ने इबारत पढ़ के लिखा है कि दामन के दाग मिटाए जा सकते हैं मगर दिल के जख्मी दागों को नहीं मिटाया जा सकता। दिलरुबा के दीदार के लिए दिलबर की हालत का अंदाज़ा एक दिल वाला ही लगा सकता है। दर्द भरे नगमों के जरिए के दरिया में बहने के लिए हमारा दिल भी बेकरार है। और एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जिंदगी बहुत अपनी सी लगती है, कहीं रिश्तों की मिठास, कहीं दोस्ती, कहीं हंसी और कहीं आंखों की नमी, कहीं आंखों को नम कर देने वाली संवेदनाएं। उनकी सादगी भरी कहानियां हमें हंसाते हुए भी जीवन का थोड़ा और करीब जीवन को थोड़ा और करीब से समझा देती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में और उनके गीत आज भी दिल में बसे हुए हैं। एक और संदेश है कि ऋषिदा की फिल्में पारिवारिक बातों पर, मध्यम वर्गीय लोगों की आम समस्याओं पर बनी थी। उनमें प्रेम की भावना समान था। एक साफ सुथरी फिल्म रहती थी जो परिवार से सब लोग बैठ के देखें तो भी संकोच नहीं होता था। और ये अगला संदेशा है कि रात कली जब ख्वाब में आने लगे तो समझिए धीरे धीरे दिल मचलता जरूर है, जो प्रेम की शुरुआती दस्तक और सपनों के एहसास नजर आ रहे हैं। जिंदगी में प्यार के रास्ते में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी कभी कोई पल ऐसे भी हो सकते हैं जहां लम्हे खो जाते हैं, जब जिस वक्त यार जुदा हो तो तब दिल कहता है कि तेरा मेरा प्यार अमर है, इसलिए हम अब के सावन में जरूर मिलेंगे। और एक मित्र ने लिखा है कि तेरे प्यार के दामन में ही लिपटे हैं हम, छोड़कर तुम्हें अब कहां जाएं हम, तेरी चाहत में इस तरह डूबे हैं हम, डर है कि खुशी से कहीं मर ना जाएं हम। क्या बात है। और ये एक अलग मैसेज है कि मन तो भागता ही है सपनों के आगे, लेकिन हमें प्रेम से दो दिलों के बीच की दीवारों को हटाना होगा। और ऋषिदा को सादर नमन। साथियों, मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की 1971 में बनी क्लासिक फिल्म आनंद एक ऐसे जिंदा दिल इंसान की कहानी है जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपनी मौत से नहीं डरता और बाकी बचे दिनों को पूरी खुशी के साथ गुजारता है। तो बताएं कि आनंद सहगल और डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिकाओं में कौन से अभिनेता नजर आए थे। और इस फिल्म के कुछ डायलॉग बेहद मशहूर हुए थे, वो भी लिखकर भेज दीजिए हमारे FB पेज पर। और तब तक सुनिए ये गीत मन्ना डे की आवाज में। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी। फिल्म का नाम है आनंद।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए हैं, जो इस तरह से हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार और सुमिता सनपाल। और मशहूर डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाए। हमारे साथियों ने लिखा है कि 1940 के दशक में ऋषिदा ने न्यू थिएटर में बतौर कैमरामैन और एडिटर काम शुरू किया। उसके बाद वो मशहूर फिल्मकार बीमल रॉय के साथ मुंबई आ गए और दो बीघा जमीन जैसी फिल्म में सहायक निर्देशक और संपादक के रूप में काम शुरू किया। उसके बाद राज कपूर के साथ उनकी फिल्म अनाड़ी ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। उनकी फिल्मों की कहानियां, रोजमर्रा की जिंदगी, सरलता, सादगी, सौम्य हास्य और आम जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती थी। ऋषिदा ने आम मध्यम वर्गीय परिवार, मानवीय मूल्यों को अपनी फिल्मों का आधार बनाया।

0: और अब पढ़ते हैं आपके कुछ संदेश। फिल्म चुपके चुपके ऋषिकेश मुखर्जी का निर्देशन और पटकथा इतनी सहज है कि फिल्म बिना किसी फूहड़ता के पारिवारिक मूल्यों और साफ सुथरे हास्य का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर की यही खूबसूरती है कि एक एक शब्द अपने भीतर किसी गीत की पूरी कहानी को छुपाए रहता है। और ये अगला मैसेज है कि आज ऋषिकेश मुखर्जी की याद का दिन है। उनकी फिल्में सादगी, संवेदनाओं और मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी कहानियां आम आदमी, उनके संघर्षों, परिवार और मूल्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने व्यावसायिक चकाचौंध और कला फिल्मों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। अगला मैसेज है कि आखिर ये दिल का कौन सा राज है जो हर धड़कन में उसी का नाम और उसी के आने का इंतजार जगाता है। अगला मैसेज है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का मानवीय स्पर्श इन नगमों को सिर्फ गीत नहीं रहने देते बल्कि उन्हें हमारी अपनी जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा बना देते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने कला फिल्मों की गंभीरता और व्यावसायिक फिल्मों की चमक दमक के बीच एक संतुलित और सहज रास्ता अपनाया। उनकी कॉमेडी फिल्में जैसे कि गोलमाल या चुपके चुपके में फूहड़ता नहीं बल्कि सौम्यता और हास्य था। आनंद या बावर्ची जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने जीवन का दर्शन, रिश्तों की गहराई का संदेश दिया है। दोस्तों, आज का सुरीला सफर हम तय कर रहे हैं ऋषिदा की फिल्मों की बातें और उनके गानों को सुनते हुए। और अब बात पति पत्नी के रिश्ते, सफलता, पुरुष का अहंकार, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर बनी एक बेहतरीन म्यूजिकल ड्रामा फिल्म अभिमान की। तो बताएं कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी बच्चन ने कौन सी भूमिकाएं निभाई थी और उनके साथी कलाकारों के नाम भी हमें लिखकर भेज दें।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

हमारे साथियों ने कुछ और बातें लिखी हैं और जवाब भी लिख दिए हैं। आवास की दुनिया के दोस्तों, आप हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं और एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। इस सफ़र में लोकप्रिय गायक सुबीर कुमार की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने और शास्त्रीय संगीत में माहिर गायिका के किरदार में नजर आई थी जया भादुरी बच्चन और उनके साथी कलाकार थे बिंदु असरानी, दुर्गा खोटे, एके हंगल, डेविड अब्राहम और ललिता कुमारी। हमारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं कि 1957 में बतौर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुसाफिर, और उनकी मशहूर फिल्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आनंद, गोलमाल, चुपके चुपके, बावर्ची, खूबसूरत, गुड्डी, आशीर्वाद, सत्यकाम, अभिमान, अनाड़ी और अनुपमा। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि मनोरंजन करने के लिए फूहड़ता का सहारा लेना जरूरी नहीं है। उनकी फिल्में शुद्ध, सात्विक और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने योग्य होती हैं। आज के युग में ऋषिदा की फिल्में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। और एक साथी ने लिखा है कि आज के गीत ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत फिल्मों से होंगे। इन गीतों में जिंदगी की सच्चाई, हंसी, खुशी, रिश्तों की मिठास, दोस्ती, आंखों को नम कर देने वाला एहसास होगा। ऋषिदा को हम नमन करते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि प्रेम भी कितना अनोखा एहसास है, दो दिलों के बीच चाहे कितनी ही दीवारें हों उसकी पुकार फिर भी सुनाई दे जाती है। चाहत का असर ऐसा होता है कि इंसान जमीन पर चलते हुए भी खुद को तारों के बीच महसूस करने लगता है, और तब दिल बार बार यही पूछता है आखिर प्यार का ये राज है क्या। अच्छा जी, आज ऋषिकेश मुखर्जी की को याद करेंगे उनके फिल्मों के गानों से। उन्होंने कई पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों को बनाया जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्में भी बनाई जिसे देखकर हंसते हुए हम लोटपोट हो गए। उनकी फिल्में परिवार में सब लोग साथ बैठकर देख सकते हैं। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें वक्त की पहचान खूब थी। उस जमाने में उन्होंने वक्त की नब्ज पकड़ी और ऐसी फिल्में बनाई जो आम दर्शकों से लेकर एक खास वर्ग के लिए थी, जहां सब कुछ सीधा सादा था और दर्शकों ने भी उन फिल्मों को खूब प्यार दिया। आज भी उनकी बनाई फिल्में जब टीवी पर आती हैं तो हम उन्हें देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। वे फिल्में कल भी कालजयी थी और आज के दौर के लिए भी बहुत अहम हैं। दोस्तों, आपको ऋषिकेश मुखर्जी की और कौन सी फिल्में याद हैं, कौन से गीत आपको पसंद है, वो हमें लिखकर भेजते जाइए। उनकी फिल्मों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी हमें बताएं। और अब हम बात करेंगे चुपके चुपके, एक बेहद मशहूर क्लासिक कॉमेडी फिल्म जिसकी कहानी हास्य और मजेदार उलझनों पर आधारित है। आपने ये फिल्म तो जरूर देखी होगी, तो बताएं कि प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी किस विषय के प्रोफेसर थे और उनके दोस्त प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा किस विषय के प्रोफेसर थे। और इस फिल्म के सभी कलाकारों के नाम लिखकर हमें भेज दें। आइए सुनते हैं ये गीत। वैसे तो सावन लगभग गुजर चुका है। आवाज है इस गीत में लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। धर्मेंद्र यानी प्यारे मोहन परिमल त्रिपाठी बॉटनी साइंस के प्रोफेसर के रोल में नजर आए थे और सुकुमार सिन्हा बने अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया था अंग्रेजी के प्रोफेसर का। और साथी कलाकार थे शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, उषा किरण, केष्टु मुखर्जी और ललिता चक्रवर्ती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कलाकारों ने स्टार बनकर नहीं बल्कि किरदार बनकर काम किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमोल पालेकर जैसे बड़े अभिनेताओं से उन्होंने बेहद सादगी भरे रोल करवाए। उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां जैसे कि जया बच्चन, शर्मिला टैगोर, दीप्ति नवल कोई ग्लैमर डॉल नहीं बल्कि घरेलू पढ़ी लिखी और मजबूत विचारों वाली महिलाएं होती थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषि दास सिर्फ हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि आंसुओं के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझाना भी उनकी कला थी। आनंद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, इस संवाद के जरिए कैंसर से जूझ रहे एक इंसान की जिंदा दिली को जिस तरह उन्होंने पर्दे पर उतारा वो मील का पत्थर है। अभिमान, पति पत्नी के बीच अहंकार, ईर्ष्या और संगीत के प्रति प्रेम के टकराव को बेहद संजीदगी और बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाया गया है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिदा ने अपने 4 दशकों के करियर में 42 फिल्में डायरेक्ट की और उन्हें भारत के मिडिल सिनेमा का पायनियर माना जाता है। उनकी फिल्में मिडिल क्लास के माहौल को दिखाती थीं। एक मैसेज है कि ऋषिदा एक ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नई राह दिखाई। उनकी फिल्में ना तो तड़क भड़क भरी होती थी, ना बहुत ज़्यादा संजीदा होती थी, बल्कि उनमें सादगी और संजीदगी का एक बेहतरीन मिश्रण हुआ करता था। उनकी फिल्मों में आम इंसान की रोज़मर्रा जिंदगी, उसकी खुशी, उसके गम और उसके मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। ऋषिदा की फिल्में जमीनी जनजीवन की जीवंत जगाती तस्वीर होती थी। दर्शक उनकी फिल्मों में खुद को महसूस करता था और बावर्ची फिल्म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक साथी ने लिखा है कि ये कैसा संयोग है कि इस वक्त टीवी पर फिल्म अनुपमा दिखाई जा रही है और गाना धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार चल रहा है और इधर रेडियो पर भी यही गाना चल रहा है। एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला था। साथियों, 1979 में आई कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल की कहानी एक युवा राम प्रसाद और सख्त मिजाज बॉस भवानी शंकर के इर्द गिर्द घूमती है और अंत में कई मज़ेदार मोड़ के बाद सच सबके सामने आ जाता है और फिल्म का सुखद अंत होता है। तो साथियों, इस मज़ेदार फिल्म की कौन सी बातें आपको याद हैं हमें लिखकर कमेंट कर दें और साथ ही ये भी बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तब तक सुना जाए ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है गोलमाल।

साथियों, आपके कमेंट्स और जवाब हमें मिल गए हैं, वो हम पढ़ देते हैं। अमूल पालेकर, उत्पल दत्त, बिंदिया गोस्वामी, अमिताभ बच्चन, देवन वर्मा और ओम प्रकाश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की अभिमान केवल एक संगीतमय फिल्म नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और वैवाहिक जटिलताओं का एक गहरा मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। ये फिल्म आज 50 से अधिक सालों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सिखाती है कि किसी भी सफल विवाह की बुनियाद एक दूसरे की सफलता का सम्मान करने और अहंकार को रिश्ते से दूर रखने पर टिकी होती है। अगला कमेंट है कि फिल्म अभिमान की सीख यही है कि महिलाओं के करियर पे पुरुष अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और एक साथी ने लिखा है कि अभी आनंद फिल्म का जिक्र हुआ था, तो इस फिल्म के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी को उसमें काम करने वाले हर किरदार की जगह खुद को रखकर देखना चाहिए, तो लगेगा कि हम ही हैं वहाँ पर। हर किरदार अपना सा लगता है। मैं ये फिल्म जब भी देखता हूँ तो अपने आप को वहाँ पर खड़ा पाता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अभिमान में अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में एक श्लोक संगीतकार सचिन देव बर्मन के संगीत में रिकॉर्ड हुआ था, और यहीं से अनुराधा पौडवाल के गीतों के करियर की शुरुआत हुई थी। साथियों, 1980 में बनी फिल्म खूबसूरत एक ऐसे परिवार की कहानी जिसकी सख्त मिजाज मुखिया घर के सभी नियम कड़ाई से लागू करती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार तनावपूर्ण माहौल में रहता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब मंजू नाम की लड़की कुछ दिनों के लिए उस घर में आती है और अपने चुलबुले नटखट और जिंदा दिल अंदाज से घर के नियमों को चुनौती देती है। तो बताएं कि घर के मुखिया के किरदार में कौन सी अभिनेत्री थी, साथ ही कलाकारों के नाम भी बता दें। और खूबसूरत इस नाम से इस फिल्म का एक मॉडर्न रीमेक भी तो बना था, तो उस रीमेक फिल्म की अभिनेत्री का नाम भी हमें बता दें। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये एवरग्रीन सुपरहिट गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गुलजार गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है खूबसूरत।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं। घर की मुखिया के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री दीना पाठक। मुख्य साथी कलाकार थे अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन, ओम शिवपुरी, शशिकला रूपिनी, और इस फिल्म के रीमेक में नजर आई थी अभिनेत्री सोनम कपूर। एक मशहूर हिंदी कॉमेडी फिल्म बुड्ढा मिल गया। फिल्म की कहानी दो गरीब और बेरोजगार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। अचानक उन्हें एक अमीर और लापता करोड़पति मिल जाता है और उन दोनों को लगता है कि इस बूढ़े अमीर आदमी को उसके घर पहुंचाकर वो भारी इनाम पालेंगे। उसके बाद फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं, तो हमें बताएं कि वो करोड़पति अमीर आदमी कौन था, और साथ ही कलाकारों के नाम भी लिख दें, और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के हीरो की पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। तब तक सुनिए ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया।

जवाब हमें मिल गए हैं। अमीर लापता करोड़पति की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे ओम प्रकाश। मुख्य कलाकार थे नवीन निश्चल, देवन वर्मा, अर्चना और अरुणा ईरानी। और इस फिल्म के नायक नवीन निश्चल की पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो, जो कि अभिनेत्री रेखा की भी पहली हिंदी फिल्म थी।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है इज्जत फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा लेकिन फिल्म से आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत गुलजार का और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: लता मंगेशकर के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि मृतकों, डुप्लीकेट और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। श्री चौहान ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा।
1: इंडी गठबंधन तो बैठक के पहले बिखर गया, डीएम के बैठक में नहीं आ रहे, अखिलेश जी कहीं और व्यस्त, आपने पहले ही मना कर दिया, उद्धव जी फिजिकली नहीं वर्चुअली जुड़े, ये इसलिए कि इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी को नेता मानने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, खुद वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है, और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाए। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, जीवित नहीं बचा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेट गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: प्रदेश में नर्सिंग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। परिणाम जारी होने से उनकी आगे की पढ़ाई, उच्च कक्षाओं में प्रवेश और करियर से जुड़ी बाधाएं दूर हुई हैं। विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतिनिधियों ने आज भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर उनका आभार जताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हित और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ

नेता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने जनसेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। और अब खबर एशियाई खेलों से, जिसमें भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर ज्योति सुरेखा विन्नम और चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अब पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 35 एमपी बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम अभ्युदय 2026 का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में जनपद सदस्य उपचुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की तबियत बिगड़ने पर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ने तत्काल CPR देकर उनकी जान बचाई। और आगरमालवा जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सोयतकला में कल 3 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त तत्वावधान में आंगन का मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को मलेरिया, HIV एड्स, नशामुक्ति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच

0: बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रूकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया के तमाम चुनौतियों तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
4: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जुड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
5: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
6: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
5: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
7: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
5: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है।
0: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है हमराज फिल्म के इस नगमे की, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने, साहिर का गीत और रवि का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा।
10: संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: सदाबहार नखमे कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है असली नकली।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नख्मा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की। फिल्म का नाम है सांझ और सवेरा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है छाया।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है नमक हलाल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सखी सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल
2: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
1: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना। अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या है कि
1: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, नहीं पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा कर दी जाती है। कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
1: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है, कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे, अरे वाह ममता जी, आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने, और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है।
1: बिल्कुल
2: ना?
1: अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही हो, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है, और माँ तारीफ कर दे, शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की, जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर, और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा। अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा। और साड़ियों का संसार है जिसमें हम बोमकाई साड़ी की बारे की चर्चा करेंगे, और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर।
2: बिल्कुल,
1: तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को, अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी है, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है, और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
2: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी। कई बार हमारे श्रोता जो हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो, तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
1: जी। और कौन सी किताब अनुवाद की है, और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में, अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि वो लिप सिंक होता है, तो वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो। और फिलहाल क्या करें,
2: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
1: आप बनाएंगे ना?
2: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
1: सारे श्रोता मिलके खाएंगे।
2: बिल्कुल,
1: फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।
3: मिलाई

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं। प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ, कोई छोटा सा तोहफा देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना।
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है।
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए। यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में प्रेम करने का अलग तरीका होता है। हाँ? तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाएगा।
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया।
1: आप मुझे बोंका ही साड़ी देने वाली है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा।
0: अच्छा,
1: आपकी प्रति।
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं?
1: थोड़ी सी कम।
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे।
1: हाँ,
0: ठीक है।
1: और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी।
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगी तब, तब तो ठीक है। प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं। मंदाकिनी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे जो श्रोता है खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें।
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी। बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान

0: लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है। वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है।
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आपको?
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून, हाँ एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून।
0: अच्छा,
1: या तो, नीला और मैरून,
0: तो मतलब ये
1: इस तरह अलग कॉम्बिनेशन वाली।
0: अच्छा, आप मुझे साड़ी, हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी। वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला। यही विरोधाभासी रंग संयोजन बोमकई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है।
1: हाँ, और बोमकई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है। पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है। और बोमकई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
0: ओह, तो बड़ी महंगी होती है।
1: कोई बात नहीं।
0: कॉटन बोमकई हल्की, आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बोमकई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और बोमकई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए एक बोमकई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर बोमकई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है। धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
1: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है। और हथकरघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है। ममता जी,
0: और आज बोमकई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
1: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बोमकई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बोमकई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती हैं
1: देखने लायक होती है। बहुत ही सुंदर होती है बोमकई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है, जो सखियां सुन रही हैं, तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बोमकई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
0: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। तो और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: तो मंदाकिनी जी आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
1: मिल जाता है।
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि संस्कृतियों, दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है, इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आप साहित्यकार हैं आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद, और इसीलिए आज का एक खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं पलटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है। तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है, वो जो संवेदनाएं हैं, थोड़ी न थोड़ी उसमें छूट जाती
1: छूट जाती है।
0: लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो ना पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को, अनुदित चीजों को पढ़ा जाए, और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है।
1: हम क्या करते हैं, भावों को अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है, और साथ ही भारत जो हमारा देश है यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है, और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है, और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है जरा सुनते हैं।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन होगा और हमारे श्रोता भी तैयार रहे, हम सब तैयार हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहे।
5: हाँ,
0: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
0: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाए और विविध भारती सुनते रहे।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
0: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
0: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
0: तो अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
5: वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
0: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सबटाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सबटाइटल्स के साथ देखता हूं।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
0: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहां पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशंस किए जा रहे हैं, एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफी समृद्ध बना दिया है और तेजी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
5: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, अनुवाद हो जाता है।
0: कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और आप वहां पर चूक जाते हैं।
5: बिल्कुल। और अब हम चूक रहे हैं, गाना नहीं सुनवा रहे हैं।
0: बिल्कुल नहीं, ये रहा गाना, सुनते हैं।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे आपसे छोटे मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनकी भोली

0: बालपन पर। और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा होता है।
1: आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो दरअसल जो जनरेशन गैप है ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं।
1: बिल्कुल। और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये बहस कहां से कहां चली जाएगी। समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये स्वाभाविक है दो पीढ़ियों के बीच का
0: अंतराल होगा। लेकिन माता पिता को लगता है ममता जी कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है। और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई, जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है, और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है। और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है। तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं। बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है वही युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है। उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है। और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे। पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है। युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
0: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता, और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहर्ष स्वीकार भी कर लेते थे रिश्ते को। अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे। इस तरह की बात जो हम करते हैं ना वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती ही है।
1: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है। पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही। आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं। वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं। यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है, तो उनका ये कहना होता है अरे भाई यहीं पर हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना,
0: वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खासतौर से साझा कर ले, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा, और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला, और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को,
0: बिल्कुल
1: गोल्डन गर्ल्स कहलाएं, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
0: होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं, तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लिख कर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
1: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: लीक से हटकर कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी भी दुनिया, किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए, कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
0: बिल्कुल सही कहा, एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती, रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है, फिर सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
1: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो, और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है, किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना, इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से, और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है, और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और मैं तो करता हूं जरूर प्रशंसा।
1: अब कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो वो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: गाने की प्रशंसा करने वाली हैं क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगे तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगे।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया है, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी है हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती है वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च लौकी पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें थक कर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें। साथ ही मसाले नमक अजवाइन ऑर्गिनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटे दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी

0: सहेली। एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार, और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल वाला रेडियो
1: जी, जी।
0: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है
1: जी।
0: और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए
1: जी। मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक होते थे। तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहां बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट, तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
0: क्या बात है।
1: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
0: अरे
1: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे
0: जी जी।
1: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
0: जी,
1: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का, विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
0: गीतों
1: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही।
0: क्या बात है
1: जी।
0: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर
1: जी, जी।
0: खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
1: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
0: जी,
1: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
0: जी जी।
1: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे। तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था, उनकी आवाज से और उनके, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो, कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया, वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां, जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है, स्कूल छूट गई कोई बात नहीं
0: जी।
1: स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है
0: जी, जी।
1: लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
0: अच्छा।
1: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकी को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
0: जी, जी, जी।
1: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर देते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
0: जी,
1: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, एक चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
0: अच्छा,
1: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी,
0: 3 साल में एक
1: तीन, हाँ 3 साल में एक। मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
0: क्या बात है।
1: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
0: क्या बात है,
1: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहाँ के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
0: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
1: मैं रिसर्च उस तरह से, देखो मैं मतलब पढ़ करके, किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहां भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
0: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर किसी विषय पर तो उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से
1: जी।
0: तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में, टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
1: ये बंबई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे
0: जी, जी।
1: रमन मिश्री जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बंबई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
0: अच्छा।
1: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
0: बिल्कुल।
1: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं
0: जी।
1: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक लोकल था, और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा, तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया। तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरी कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर हैं, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
0: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने आप लिख जाती है?
1: कहानी लिखते समय कभी भी ना ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
0: बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
1: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
0: बिल्कुल,
1: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
0: जी जी,
1: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
0: जी जी, और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
1: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
0: जी,
1: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
0: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

0: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन हैं, संगीत के बहुत शौकीन हैं जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां साज ना साज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
1: अच्छा,
0: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज ना साज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपक के सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। उस सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बंबई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद
0: जी।
1: बंबई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चौल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
0: जी जी।
1: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
0: है नहीं बताया जाता,
1: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज ना साज का।
0: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी
1: जी,
0: जिसमें
1: जी,
0: सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है, तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
1: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
0: जी,
1: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
0: जी।
1: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी
0: और दुख में,
1: और उसको भी शास्त्रीय संगीत

0: के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज की भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल।
0: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, वो इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी। फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर्व
1: जी, पंडित कुमार गंधर्व,
0: हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूं। बल्कि सिर्फ आवाज का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे जहन में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
0: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है, उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते। अच्छा, दिक्कत एक ये आती है एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है, है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
0: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
0: जी जी,
1: तो ये क्या कहानी है, कैसे किसी
0: के मन में? डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी। असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
1: शॉर्ट फिल्म थी, कोई
0: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन परिचय
1: जी जी।
0: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
1: जी,
0: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
1: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
0: नहीं,
1: लिए
0: मैं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था जिनका,
1: पर आपकी किताब शामिल थी उस,
0: किताब शामिल थी मेरी
1: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म, बेहतरीन।
0: वो असल में जैसे भी एक विज्ञापन फिल्म थी, वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को जो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान है
1: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
1: मौजों की रवानी,
0: मौजों की रवानी है,
1: शोर फिल्म का गाना है, सुनते हैं यही गाना
0: जी।

0: अब बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना। फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं। हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रूपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आप को जो ना फिल्म का मर्मज्ञ या विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूं,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आप को फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूं।
0: जी
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं, और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं, प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई ढंग है चिट्ठी लिखने का?
0: अरे
1: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया, पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी, क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग, कैसे वो आ जाते, लेकिन वो आए। उन्होंने 2 दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई, मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो 1 महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहां, और वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
0: अच्छा।
1: तो वहां से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया, फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया।
0: हाँ।
1: मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें, क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो क्या दिक्कत है? मैं बोला मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तुम कहां तक पढ़े हो? वो मैंने कहा कि मैं 6वीं फेल हुआ, वो मेरा चेहरा देखते रह गए, तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूले एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तो उसमें आ जाओ। तो मैं वहां गया, प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुला, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉर्ट किस तरह से लिए जाते हैं, कोई अगर मीडियम शॉर्ट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉर्ट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारूलता।
0: अच्छा।
1: चारूलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है, 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के, और कैमरे का मूवमेंट जो है ना उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
0: जी जी।
1: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताती कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारूलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
0: आपको फिर वहां एडमिशन मिला कि नहीं?
1: नहीं मिला।
0: नहीं मिला।
1: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा, पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
0: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि एक बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील, तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
1: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
0: पास नहीं हो पाऊंगा। ओके।
1: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
0: जी,
1: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो। गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
0: जी।
1: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
0: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
1: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है, और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
0: बस
1: तो बस बहुत हो गया।
0: हाँ।
1: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: अच्छा मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में, लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
0: अच्छा तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया, और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा बात चली है तो उनका भी जिक्र कीजिए।
1: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनाने, उसने पूछा ही, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं छठवीं फेल हूँ, तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
0: अच्छा।
1: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
0: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
1: उसके मतलब कारण पास हो गया।
0: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने हाँ, पास किया कि नहीं?
1: बिल्कुल पास किया होगा।
0: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
1: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
0: जी।
1: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
0: जी। क्या बात है।
1: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है, नीता के 4-5 भाई हैं और मेरी भी 4-5 बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर के घर में पहुंच जाती है।
0: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
1: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, वो पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है
0: जी, साजन बिना सुहागन।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या इस सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए हैं,
1: जी,
0: तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूं। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूं। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है, दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में एक बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कसम में जीते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो उस पर कई कहानियां हैं और उसको एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी हैं, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया, लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो 2-3 साल तक लगातार चलती रही कसम। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
0: जी जी,
1: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है। तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब टीम भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
0: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
1: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
0: जी।
1: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी वही कहानी भी अपने रंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
0: तुझी में वाट पाते।
1: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
0: जी,
1: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसते जा रही है
0: जी।
1: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है जो उसका अतीत है
0: जी जी।
1: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा है,
0: उस किरदार ने लिखा है,
1: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
0: बिल्कुल,
1: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्यों को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
0: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़ जाते हैं।
1: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहे कि आत्मसात करना।
0: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारों, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
0: सुनते हैं ये गाना
1: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति
1: जी,
0: बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखने
1: अब आ रही है?
0: आ रही है
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ,
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसे आम आजगा कहानी जो थी, वो लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था बसंत के साथ उन्होंने, और मैंने वो पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया है
0: जी,
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया है, और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, वो उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था तो आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है
1: जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैट किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रतिसंसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लिखेंगे?
1: नहीं, फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहाँ पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी, और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूं अभी।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना, उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा, और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहां बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के, ये फिल्म और इन फिल्मों की कहानी। फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफ साइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है, तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती है। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां,
0: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
1: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
0: जी,
1: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
0: जी,
1: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है, तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
1: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ। मोटे मोटे शब्दों में
0: जी,
1: कि किसकी किसी तरह की मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है।
0: जी जी,
1: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है।
0: जी जी,
1: तो ये भीतर बाहर के जो कसमकस है उसी में कहानियां हैं।
0: बिल्कुल, तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
1: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती है मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था, और लिखता था कुछ, और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता।
0: जी जी, ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लिखकों को
1: हाँ एकांत चाहिए,
0: एकांत चाहिए।
1: हाँ, मैं अभी भी अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
0: हाँ,
1: काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
0: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं।
1: जी, जी।
0: लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं, तो ये जो तादाद में है किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
1: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूं ना भाई, मैं लेखक तो हूं, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें, तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
1: उत्कृष्ट तो, चित्रकार नहीं।
0: ये आप कहते हैं तो नहीं, चित्रकारी नहीं। के शौक और चित्रकारी के बारे में बताएं।
1: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी,
0: जी
1: हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमानों को जब बुलाती है, उसमें साहित्यकार हैं, कलाकार, ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने, और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ है उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ है उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं, बोले आपके घर आया हूँ तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं, और ये दो चार दिन के बाद वो LIC का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई,

0: बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है, और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़ के, तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है, लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया, लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा यार, यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज, अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा।
1: जी जी
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है, भले वो किसी काम का ना हो, लेकिन हाँ, करना बड़े कैनवास
1: बड़े
0: में
1: फलक पर। बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था
1: जी जी।
0: उस दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी है। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग
0: नहीं बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ, तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेले मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां, जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है, वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं। इससे बड़ा योगदान क्या होगा?
1: जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय,
1: हाँ हाँ,
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले। उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की, जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो।
1: जी जी।
0: लेकिन जब तक नहीं सुना तब तक उसको नींद नहीं आती थी, तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आप को जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी, बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है। फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे, आज बस इतना ही। आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार, कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
5: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु।

0: भूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजवीर।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी कौमुदी। दोस्तों, युववाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जहां कभी बात होती है आज के मुद्दों की, कभी कुछ नया जानने समझने की, और इन्हीं बातों के बीच कहीं ना कहीं संगीत भी अपनी जगह बना ही लेता है।
0: बिल्कुल कौमुदी, युववाणी में विचार और संगीत दोनों ही अपनी अपनी तरह से हमसे जुड़ते हैं।
1: और राजवीर, आज तो संगीत के लिए हमारे पास एक खास वजह भी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज की प्लेलिस्ट हमने तैयार नहीं की है।
1: जी हाँ, आज के गीत चुने हैं आपने, देश के अलग अलग हिस्सों से आई है आपकी फरमाइशें, और अब हमारी बारी है उन्हें एक एक कर आप तक फिर पहुंचाने की।
0: बिल्कुल, किसी ने अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश की है तो किसी ने अपने नाम के साथ पता भेजा है।
1: तो चलिए अब बातों को थोड़ा विराम देते हैं और बढ़ते हैं सीधे उन गीतों की ओर जिनका इंतजार हमारे श्रोताओं ने किया है।
0: देखते हैं आज की संगीत भरी मुलाकात की शुरुआत किसकी फरमाइश से होती है
1: और कौन सा गीत बनता है आज की पहली पसंद।
0: तो शुरू करते हैं इस फरमाइश को, और आज हमें फरमाइश मिली है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रज्जन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश सोमिया, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी गायत्री, यज्ञेश हरसिद्धि विहार उज्जैन से, अरुण चोरे, हेमलता चोरे महानंदनगर उज्जैन से, अमर जोशी, काव्या जोशी पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, वेद प्रकाश, लक्ष्मी मोहनी, तरुण कुमार
1: मुंडा टोला डोंडी लोहारा से, डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। इसी के साथ फफूंद चिला औरैया उत्तर प्रदेश से हमारे पास फरमाइश आई है अमानत उल्ला खान, हिना खान, मजहर उल्ला खान, उनवर उल्ला हसन खान, असलम खान और तारिफ मिस्त्री की। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरफ खुराना, SK पप्पी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरिमणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। अररिया बिहार से शरीफ आरजू और गुड्डू रंगीला। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े और दीपाली खोबरखेड़े। बोलढाणा से दीपाली राम धाडे और स्वराज राम धाडे। और अब इसी के साथ पेश है आपकी पसंद पर आज का हमारा पहला गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना फिल्म दबंग से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत। संगीत दिया था साजिद वाजिद ने और बोल थे जलीस शेरवानी के। इसी के साथ अगली फरमाइश है अमरावती से सुनेना पवन भोंडे की। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है उज्जैन से धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने, ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल, भगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, गुलिस्तान कॉलोनी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, अडार नांद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी वर्मा, गांव बिठोड़ा भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिम विदर्भ से योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और साथी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान पूजा परिहार।
5: चंद्रपुर से हमारे पास फरमाइश आई है शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फैजान फारूक शेख, जीना तिरफान शेख, वसीम अफसान और फरहान, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाव खट से, ललिता आशा रानी खट से, संजना परी खट से, गणेश कार्तिक खट से, वन भगेरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, निलेश, अंजलि, रोशनी सारवा और ख्याति सारवा, डूंडी लोहारा जिला बालोद से देवशंकर तामूरिया, प्रभा देवी तामूरिया, अजय देव, तुषार देव डाली, बीबी पूजा राधिका और मास्टर अल कबीर, गांव टोरावाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, न्यू केशव नगर उदयपुर से फरमाइश आई है कोमल भारद्वाज, अनुषा भारद्वाज और शांतनु भारद्वाज की, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तान्या नारंग। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं आपकी पसंद पर हमारा अगला गीत।

0: आपने सुनी फिल्म सिंगिस किंग से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में प्रीतम के संगीत के साथ मयूरपुरी के बोल। दोस्तों, आपकी फरमाइश हमारे लिए सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि आपकी पसंद और भावनाओं की आवाज़ है, इसीलिए अब बिना देरी के सुनते हैं कि हमारी अगली फरमाइश कहाँ से आई है।
1: दोस्तों, अगली फरमाइश है तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से, भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, मुमताज़ मोहल्ला, नवगछिया, बिहार से, इसराइल अंसारी, सीरत अंसारी, आलिया खातून, छुरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी, देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर ठाकुर, मानू शानू, बबन मुनू, काना ठाकुर, यादव मोहल्ला, सनावस से, दिलीप मालाकार, सुलीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र मालाकार, धर्मेंद्र मालाकार।
0: भारती नगर मुश्कीपुर गोगरी से राजेश भारती, विभा रानी, आदित्य राज, प्रिया भारती, विवेक रमन, अक्षत रमन, परिधि रमन, विनीता रमन, बाबूजी माँ, बबीता, संजीव, रश्मि, मीठी, लक्ष्मी, राजेश रमन, प्रियंका भारती, प्रेरणा भारती, प्रगति भारती, आशीष, प्रिंस, संतोष, आयुष और शिवम अंशु। रोवर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। श्री गंगानगर से विनोद भाई।

0: बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रितेश संगई और पूरा संगई परिवार, नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा डोंगर दिवे, रीमा डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गारवी और हिमाक्ष, श्रीगंगानगर राजस्थान से निकी राम बंसीवाल, गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, राहुल शर्मा और मनीष शर्मा,
1: जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फेजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, उत्तम कुमार जमघाड़े, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके, खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, भारती नगर मुश्कीपुर गोगरी से राजेश भारती, विभा भारती की फरमाइश पर पेश है अगला गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म जबरिया जोड़ी से यासीर देसाई की आवाज में ये गीत। संगीत था तनिष्क बागची का और बोल थे रश्मि विराग के।
1: इसी के साथ लेवाई छत्तीसगढ़ से हमारे पास फरमाइश आई है गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी की। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा और अर्चना वर्मा। जिला बधाईयों उत्तर प्रदेश से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद सिद्दीकी और सादिक सिद्दीकी। ग्राम चरौदा जिला बुलादा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर। उन्हील जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया ठाकुर, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया, रियांश वाकतरिया और प्रतीक वाकतरिया। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जांगेल, मनीष जांगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जांगेल और नंदिनी जांगेल। सिद्धार्थ नगर दयापुर बावली से गजानन येले, नंददीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। बुरहानी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनिकर और धीरज साफेश। सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियारुर रहमान, दुबई से चंदू कुलकर्णी, हिमलता और सीआर कुलकर्णी। दादा बाबू रोड झारखंड से मोहम्मद यासिन अनजान, सहमा नवाज, हसन नवाज, बादल अहमद, मिजा नवाज और बेबी राहत और सादिया। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हमारा अगला गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से सोहम चक्रवर्ती की आवाज और प्रीतम के संगीत में ये गीत बोल थे सईद कादरी के। और इसी के साथ अगली फरमाइश है हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन भाटकारी, राधा नामदेव, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गंगेल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अरुण जायसवाल, दुर्गेशी जायसवाल, राखी जायसवाल, रुद्री जायसवाल, ग्राम कुहा खुर्द अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता हागोने, प्रिया हागोने, पार्थ हागोने, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा, इशिका वर्मा, धनोरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आनंद, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, संजना नामदेव, रेखा पूर्वी, रूही अनु, अनन्या नामदेव, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफसल मलिक। तो पेश है आपकी फरमाइश पे अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली 6 से ये मधुर गीत। इसे अपनी आवाज़ दी थी मोहित चौहान ने और संगीतबद्ध किया था एआर रहमान ने, बोल थे प्रसून जोशी के। इसी के साथ दोस्तों बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली पसंद हमें कहाँ से आई है। पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, भोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुद्रा भगत और गुनी भगत, ग्राम पिरपा पोस्ट कॉलोनी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से राजाराम अहिरवार, कौशल्या देवी अहिरवार, मोहिनी अहिरवार और शिवा अहिरवार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे और विनोद खटसे, कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी, रिया यादव एवं रोहिणी यादव। और आपकी फरमाइश पर अब सुनते हैं हमारा अगला गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म कुछ कुछ होता है से ये मधुर गीत। इस गीत को अपनी आवाज दी थी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। संगीत था जतिन ललित का और बोल थे समीर के। और साथ ही वक्त हो चला है अगली फरमाइश का। तो दोस्तों अगली फरमाइश है लोहार पंडरिया छत्तीसगढ़ से, उत्तम कुमार बघेल, खुशमनी बघेल, साहिल भारती बघेल, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की। ऊपरकोट मोहल्ला चौधरी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनाज सरफराज, परवीन सुहान, अरजान और अवान अब्बासी। ग्राम जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुन्नो देवी, अर्जुन भारती, कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से शारदा वर्धे, रामराव नितोने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोते गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, साडुल शहर। राजस्थान से रामकुमार रेवार, चंद्रकला रेवार। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। नेवलेश्वर नगर नरखेड़ महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सावने, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, पद्मा टाकीज। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, हरिणी शाह, अक्षिन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह की फरमाइश पर पेश है अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से नीरज श्रीधर और सुजैन टिमेलो की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया था प्रीतम ने और बोल थे इरशाद कामिल के। इसी के साथ पढ़ते हैं आगे हमारी अगली फरमाइश के साथ, जो आई है तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विनोद कुमार जांगड़ा, एसपी खीपड़ परली का, राम निवास छीपा और योगेश शर्मा की। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। बेडरी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। इसी के साथ जिला उज्जैन, बरखेड़ा, पीपलमाल मध्य प्रदेश से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूनत। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साजना शर्मा और निवान शर्मा। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और रिवांश वर्मा। पंजाब से गांधी चौक रोपड़, हरदेव मिका, बलविंदर मिका, जयदेव विर्क और मिका वर्ग की फरमाइश पर चलिए सुनते हैं हमारा आज का आखिरी गीत।

0: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म राज से ये गीत कृष्णा की आवाज में, जिसके बोल थे कुमार के।
1: राजवीर, लगता है कि हमारा आज इन प्यारे गीतों के साथ सफर अब यहीं तक था।
0: बिल्कुल कौमुदी, लेकिन अच्छी बात यह है कि गीत खत्म हो सकते हैं लेकिन पसंद नहीं।
1: बिल्कुल, और आपकी पसंद के गीतों का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा।
0: तो अब तक अपनी पसंद के गीत सुनते रहिए
1: और अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी प्यारी सी फरमाइश के साथ।
0: मैं राजवीर
1: और मैं कौमुदी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी विनय। बाबा महाकाल की पावन नगरी पुण्य सलीला माँ शिप्रा के पावन तट से प्रस्तुत है हमारा विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम भजन संध्या। आइए अपने मन को भक्ति रस में सरोबार करते हैं और आनंद लेते हैं आज की इस पहली सुमधुर प्रस्तुति का। श्रोताओं, प्रभु के पावन चरणों में शीश झुकाते ही हृदय के सारे संताप दूर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग पर जो एक बार चल पड़ते हैं वह प्रभु के रंग में ऐसा रंगते हैं कि प्रभु उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उनके दुखों का नाश करते हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

राम नाम की महिमा ही ऐसी है कि सुनने वाले और जपने वाले दोनों ही धन्य हो जाते हैं। और जब बात हो सांवरे कन्हैया की, खाटू नरेश की या बांके बिहारी की, तो मन सहज ही कह उठता है कि संसार में सच्चा प्रेम केवल उस परमेश्वर से ही संभव है। जब लगन सच्चे मन से लगे तभी जीवन सफल होता है। आइए सुनते हैं आज का अगला बेहद लोकप्रिय भजन।

यह आकाशवाणी उज्जैन है, फ्रीक्वेंसी FM 102.5 MHz। आप सुन रहे हैं संध्याकालीन भक्तिमय कार्यक्रम भजन संध्या, आपके साथ ही विनय के साथ। अवंतिका नगरी उज्जैन, जहाँ कण कण में देवाधिदेव महादेव विराजते हैं। जब भी जीवन में कोई संकट आता है, भक्त एक ही पुकार लगाता है, मेरे भोले मेरे बाबा। आइए महाकाल की नगरी से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुनते हैं यह भावपूर्ण वंदना।

बाबा के दर की महिमा अपरंपार है। जिसने भी सच्ची श्रद्धा से उस चौखट पर दस्तक दी, उसकी झोली कभी खाली नहीं रही। दुनिया के सब दरवाजे भले ही बंद हो जाए, लेकिन परमात्मा का द्वार हर भक्त के लिए सदा खुला रहता है। इसी भाव को शब्दों में पिरोता हुआ ये भजन आपने सुना। श्रोताओं, भक्ति की यह अविरल धारा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। उस परमपिता परमात्मा का प्रताप तीनों लोकों में गुंजायमान है, जिनके नाम का डंका आकाश, पाताल और धरती पर सदा बजता है। आइए एक और सुमधुर भजन सुनते हैं, इस भजन का आनंद लीजिए।

श्रोताओं, इसी मधुर भजन के साथ अब समय हो चला है आज के हमारे इस कार्यक्रम भजन संध्या को यहीं विराम देने का। आशा है कि आज के इन सभी भजनों ने आपके मन और आत्मा को असीम शांति प्रदान होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, जिसको गाया है लता मंगेशकर जी ने।

जिंदगी के मोड़ भी बड़े अजीब होते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां मिलता है तो कभी दास्ताने अधूरी रह जाती है। शैलेंद्र साहब की कलम से निकला और लता दीदी की मखमली स्वर में ढला यह पहला सदाबहार नगमा आपने सुना। और अब बात उस धुन की जिसके बजते ही कांच के गिलास की वो खनक कानों में गूंज उठती है। पंचमदा का पश्चिमी और हिंदुस्तानी संगीत की अनूठी जुगलबंदी। आइए सुनते हैं इस बेहद प्यारे नगमे को।

श्रोताओं, जब साहिर की शायरी और खयाम साहब की सादगी भरी धुन मिलती है तो मुकेश जी का दर्द भरा यह स्वर सीधे रूह को छू जाता है। आइए महसूस कीजिए इश्क के इस खूबसूरत एहसास।

एहसास को। मदन मोहन जी को गज़लों का शहजादा यूं ही नहीं कहा जाता। जब साधना के नैन नक्श पर लता जी की आवाज़ तैरती है तो वक्त मानो ठहर सा जाता है। सुनिए इस कालजयी रचना को।

वाह, क्या आवाज़ है लता मंगेशकर जी की। श्रोताओं, बरसात की भीगी रात, एक छाते के नीचे राज कपूर और नरगिस, और बैकग्राउंड में बजता यह अमर तराना। जब दिल प्यार का इकरार करता है और दुनिया की बंदिशों से भी डरता है। सुनिए मन्ना डे और लता जी की आवाज़ में यह प्यारा सा गीत।

गुलजार साहब की कलम और खामोशियों का फ़लसफ़ा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन के अभिनय से सजी फिल्म आंधी का यह संजीदा गीत सुनिए और आनंद लीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम के 7 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर इन

0: सबके लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपए, जौ के लिए 136 रूपए, चने के लिए 83 रूपए और गेहूं में 25 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रूपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। यह कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए जानते हैं आज प्रस्तुत होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 7:21 पर माटीरी बात मालवी समाचार निमाड़ी लोकगीत कार्यक्रम आप उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुन पाएंगे। समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से ही रात 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुन पाएंगे। रात 10 भोपाल केंद्र से 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल आप सुनेंगे। भोपाल केंद्र से ही रात 10:20 पर आपकी फरमाइश भोपाल कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। अब बात करते हैं कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से सुना जा सकेगा। विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रातः 6:05 पर वंदनवार चिंतन कार्यक्रम और 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुन पाएंगे। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से प्रातः 7 बजे महाकाल वंदन कार्यक्रम और 7:20 पर सुप्रभात उज्जैन प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर सुन पाएंगे। सुबह 8:30 पर भोपाल केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रायोजक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल से सुना जा सकेगा। आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रातः 9 बजे उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से उज्जैनी आरजे आप सुन पाएंगे। बॉलीवुड बीट्स नए फिल्मी गीत कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से और सिंहस्थ संवाद 10 बजे अमृत घट बरसे एपिसोड 1 आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। साथ ही साथ 10:15 पर कुछ बातें कुछ गीत सजीव फोन इन आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम और यादों की महफिल कार्यक्रम 12:05 पर सुना जा सकेगा। दोपहर 1 बजे विविध भारती मुंबई केंद्र से ही सुरीला सफर कार्यक्रम सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम और 2:15 पर दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से 2:30 पर सदाबहार नगमे फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। विविध भारती मुंबई केंद्र से ही 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम और शाम 4 बजे हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना जा सकेगा। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से शाम 5 बजे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, शाम 6 बजे भजन संध्या और किसानवाणी कार्यक्रम 6:30 पर आप सुन पाएंगे, जिसकी प्रस्तुति होगी आकाशवाणी भोपाल से। दिल्ली से समाचार आप 7 बजे सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से 7:10 पर सुना जा सकेगा। मालवी की तारी गुंज मालवी समाचार कार्यक्रम 7:21 पर उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सुन पाएंगे। दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर समाचार संध्या कार्यक्रम और दिल्ली केंद्र से ही रात 9 बजे न्यूज 8:09 प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। रात 9:15 पर उर्दू में समाचार भी आप दिल्ली केंद्र से ही सुन पाएंगे। भोपाल केंद्र से आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात 9:30 पर। भोपाल केंद्र से रात 10 बजे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल आप भोपाल केंद्र से सुनेंगे। गीतों का गुलदस्ता कार्यक्रम रात 10:20 पर भोपाल केंद्र से और राग रजनी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात 10:30 पर सुना जा सकेगा। दिल्ली केंद्र से रात 11 बजे हिंदी में समाचार और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। अब थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि
1: रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के लिए 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को मजबूत कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण की क्षमता विकसित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रस्तावित मार्च तथा ईडी गठबंधन की बैठक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। NI के अनुसार श्री चौहान ने कहा कि 2 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ मार्च को वे परिवार बचाओ मार्च मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद आत्ममंथन करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती है।
2: ये सेव डेमोक्रेसी मार्च नहीं है, ये सेव डायनेस्टी मार्च है, परिवार बचाओ अभियान। लेकिन जनता ने तय किया कि अब परिवारवाद की राजनीति चलने नहीं। अभी चुनाव नजदीक आते हैं, तब ये ईडी गठबंधन, राहुल जी, खड़गे साहब, ये या तो अदालतों पर या संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करने लगे। अगर कोई अदालत मन के मुताबिक फैसला ना दे तो न्यायपालिका पर सवाल उठाते, विदेशी धरती पर जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की वकालत करते हैं। ये देश की बात करेंगे, देश के लोकतंत्र की बात करें। जब जनता के दिल से मोदी जी को नहीं हटा पाए, एक बार फिर अराजकता और देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं।
0: श्री चौहान ने ईडी गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि बैठक से पहले ही गठबंधन में मतभेद सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख दलों के नेता बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि उद्धव ठाकरे वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरू ढांडा और कायन चेनाई को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए स्पर्धा में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय तीरंदाजों ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं, जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। तो आइए जानते हैं कि उमरिया जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला रही है।
4: उमरिया जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मध्यम एवं लघु रकबे के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका समृद्ध हुई है। ग्राम परसौरा निवासी किसान सूरज पाल सिंह बताते हैं कि
5: कृषि विभाग द्वारा मुझे खेती किसानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप प्रदान की गयी, जिसे मेरी सिंचाई क्षमता की गयी और उसे

0: ऐसे में अरुण कुमार त्रिपाठी।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में सुबह 10:30 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में 500 से अधिक वरिष्ठ जन शामिल होंगे। इस अवसर पर 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रदेश भर में वरिष्ठ जनों के लिए स्वास्थ्य जांच, डिजिटल प्रशिक्षण, मनोरंजन गतिविधियां और उनके अधिकारों तथा सहायता व्यवस्थाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल परिसर में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत करीब 10 स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता मित्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर केंद्र के क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा पी वर्धन, स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार www.mpeupargan.nic.in पर पंजीयन करा सकेंगे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं के केंद्रों पर पंजीयन निःशुल्क होगा, जबकि एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर तथा लोक सेवा केंद्रों पर अधिकतम 50 रुपये शुल्क लिया जा सकेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मध्य प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और सह प्रभारी रेखा वर्मा आज भोपाल पहुंचे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा है। कटनी, मुरैना, आगरमालवा और खंडवा जिलों में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले में शासकीय आईटीआई भानपुरा में जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला प्रशासन द्वारा युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलीराजपुर में युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए विशेष अभियान 28 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरकोट और उप स्वास्थ्य केंद्र सेमलिया का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 2,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:21 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटेरी बात मालवी समाचार।

राम राम मारा मालवा का भाई बहनों अने सबके जय श्री महाकाल। तो कैसा हो तुम सब, मजे में ने मौज में तो होनी। हूँ तमारो भाई कुलदीप शर्मा एक बार फिर तमारो सबको स्वागत करूँ अपना इना विशेष कार्यक्रम माटीरी बात में। तो भाई बहनों, खेती आज सिर्फ हल बेल अने मौसम का अंदाज तक सीमित नहीं रही है। पहला का जमाना में किसान मौसम के देखे के अंदाज

था कि आज पानी आएगा कि नहीं आएगा। अब किसान मोबाइल से ही मौसम देखे है, मिट्टी की जांच भी करवाई ले, ड्रिप भी लगाई ले, अने नई फसल भी अजमाई रहे। पर सवाल यो है कि यो सब है कहीं, यो है नवाचार। अब खेती में नवाचार आखिर हो ही गई। नवाचार को मतलब खाली कोई महंगी मशीन खरीद लेना नहीं है। किसान अपना रोज का काम में कोई नयो तरीको अपनाए, अने उनमें मेहनत समय या खर्च बची जाए तो यो भी एक नवाचार ही है। जिनमें कोई किसान पानी बचाने के लिए खेत में ड्रिप लगाए, कोई किसान मल्चिंग करे, कोई किसान जैविक खाद तैयार करे, या कोई किसान फसल की बोवनी मशीन से सही दूरी पे करे, ये सब खेती में नवाचार का उदाहरण ही है। तो आज अपन ऐसी ही बातचीत करांगा जो खाली खेती पे नहीं बल्कि खेती का साथ नवाचार, ड्रैगन फ्रूट की खेती अने साथ में किसान भाई हूं की खेती का साथ आमदनी पे भी होएगा। पर क्यों नहीं ना सबका पहला अपने मालवा अने देश प्रदेश का हाल जानना अभी भी अपनी मालवी बोली में। तो आओ सबसे पहला सुना अपन मालवी समाचार। आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है मालवी समाचार।

नमस्कार, राम राम। समाचार उनका साथ हूँ, तमारो भाई कुलदीप शर्मा। सबसे पहला इन बुलेटिन का खास समाचार। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतवा पे प्रधानमंत्री अने मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ी हुन के दी बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पे भोपाल में वरिष्ठजन हुन को करेगा सम्मान। सेवा संकल्प यात्रा को आगरवानवा में हुयो प्रवेश, ग्रामीण हुन ने करियो स्वागत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतवा पे नीरू डांडा अने कायन चेनाई के बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बोलियो कि भारतीय जोड़ी ने फाइनल में एशियन रिकॉर्ड बनाता हुई इन्हीं स्पर्धा में भारत का लिए पहलो एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीतियो है। प्रधानमंत्री ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतवा वाली ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप अने चिकिता तनिपार्थी के भी बधाई दी। उनने बोलियो कि भारतीय तीरंदाज उनने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स में स्वर्ण अने कांस्य पदक जीतवा वाला भारतीय खिलाड़ी हुन के बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामला हुन की समिति ने विपणन सत्र 2027-28 का लिए सगली अनिवार्य रबी फसल हुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के मंजूरी दे दी है। सूचना अने प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुसुम का MSP में 675 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों अने खसखस में 413 रुपया, मसूर में 390 रुपया, जौ में 136 रुपया, चना में 83 रुपया अने गेहूं में 25 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करी है। मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस का लिए 1,799 करोड़ रुपया से ज्यादा की अनुमानित लागत वाली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना के भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना के मंजूरी दी है। इसके तहत अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के मजबूत करी के राज्य अनेक केंद्र शासित प्रदेश हुन में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण की क्षमता विकसित करी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल 1 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का अवसर पे भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ जन हुन के सम्मानित करेगा। RCVP नरोहा प्रशासन अकादमी का स्वर्ण जयंती सभागार में सवेरे 10:30 बजे से होने वाला कार्यक्रम में 500 से ज्यादा वरिष्ठ जन हुन शामिल होगा। इन अवसर पे 100 साल या इससे ज्यादा उम्र का वरिष्ठ नागरिक हुन के शतायु सम्मान से सम्मानित करियो जाएगा। प्रदेश भर में वरिष्ठ जन हुन का लिए स्वास्थ्य जांच, डिजिटल प्रशिक्षण, मनोरंजन गतिविधि हुन, उनका अधिकार अने सहायता व्यवस्था हुन का साथे जानकारी देवा को कार्यक्रम भी आयोजित करियो जाएगा। प्रदेश में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण अने सामुदायिक विकास की सरकारी प्राथमिकता से जोड़वा पे जोर दियो गयो है। आज भोपाल में आयोजित CSR कॉन्क्लेव में महिला अने बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बोलियो कि CSR खाली गतिविधि हुन पूरी करवा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इससे समुदाय हुन के मजबूत करवा अने मनक हुन का जीवन में स्थायी बदलाव लावा वाला परिणाम सुनिश्चित करिया जाए। प्रदेश में भावांतर योजना का अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में सोयाबीन उपार्जन का लिए किसान हुन को ई उपार्जन पोर्टल पे पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक करियो जाएगो। किसान निर्धारित प्रक्रिया का हिसाब से www.mpeupargan.nic.in पे पंजीयन करी सकेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय हुन अने सहकारी संस्था हुन का केंद्र पे पंजीयन निःशुल्क रहेगा, जबकि MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर अन्य लोक सेवा केंद्र हुन पे अधिकतम 50 रुपया शुल्क लियो जा सकतो है। धार में आयोजित नई दुनिया एक्सीलेंस अवार्ड 2026 समारोह में आज समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा प्रशासन अन्य व्यवसाय का क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करवा वाला 26 विशिष्ट जन हुन के सम्मानित करियो गयो। समारोह के संबोधित करता हुए धार जिला का प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बोलियो कि समाज के लिए लगातार काम करवा वाला व्यक्ति हुन को सम्मान जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान का तहत वाराणसी से गुजरात का वड़नगर तक निकाली जाई रही सेवा संकल्प यात्रा को आज आगर मालवा जिला में प्रवेश हुयो। राजगढ़ से माणा गांव पहुंचवा पेरा स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन अने गांव वाला हुन ने पुष्प वर्षा करी के यात्रा को आत्मीय स्वागत करियो। यात्रा का दौरान माणा स्थित देवनारायण गौशाला में गोपूजन करी गयो अने गाय हुन के गुड़ खिलाया गयो। तो यो था आज का अपना मालवी समाचार।

0: तो भाई बहनों बात चली रही खेती की, अब खेती में फसल की बात भी हुई, अब फसल में बात हुई नवाचार की। तो नवाचार की बात हुई तो भैया खेती में जो किसान के हमेशा से मौसम जमीन अने पानी का हिसाब से फसल लेनी रहे, पर अब समय बदल तो जाए है अने किसान भी नई नई फसल आजमावा लगी गया है। इनमें एक फसल है ड्रैगन फ्रूट, नाम सुनवा में थोड़ा अलग लागे है पर आजकल घना किसान इन्हीं खेती में रुचि दिखाई रहा है। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसो फल है जिको पौधो बेल जैसो बड़े है, अने उका सहारा के लिए सीमेंट का खंबा और दूसरी मजबूत व्यवस्था करी जाए है। पौधा लगावा का बाद सही देखभाल अने स्थानीय परिस्थिति का हिसाब से थोड़ो टेम बाद फल तो आई जाए है, पर पूरी सावधानी रखनी पड़े है, पूरी पैदावार तक पहुँचवा में टेम भी लगे है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में सबसे पहली बात जमीन अने पानी की व्यवस्था देखनी जरूरी है। खेत में पानी भरियो नहीं रहना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी में पौधा खराब हो सकता है। जगह अने जमीन ठीक हो तो किसान कतार में पौधा लगाए है अने हर पौधा के सहारो दियो जाए है, पौधा ऊपर चढ़ी के चारी तरफ फैले है। जदे पौधा बड़ा हुई जाए अने फूल आवा लगे है तो खेत में एक अलग ही नजारो देखने के मिले है। मान लो अपना मालवा का कोई किसान पहली बार ड्रैगन फ्रूट लगाए है, पहला टाइम आसपास का लोग पूछेगा कि भैया यो कैसो फल लगाई लियो, यो कहीं अजीब सो लगायो तुमने, कहीं कैक्टस जैसो झाड़ लगाई लियो। पर जदे उनका खेत में लाल रंग का फल लटकवा लागे अने किसान बाजार में बेची गए और आमदनी कमाए तो बीज लोग बोले है कि नई फसल आजमा में बुराई कैसी, खेती में ई बदलाव ही धीरे धीरे आई है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पौधा लगावा से पहला किसान के बाजार की जानकारी लेनी भी जरूरी है। खाली इन्हीं बात के देखी के फसल नहीं लगानी चाहिए कि फल महंगो बिकी सकतो है, मांग कितनी है आसपास, बाजार कहाँ की जगह है, कहाँ बेची सकता हो, फल की तुड़ाई कैसी होगी और पैकिंग कैसे कर सकता हो, पैकिंग करने के बाद कहाँ की मंडी में बेची सकता हो, ये सब बात पहला समझ लेनी ज़्यादा जरूरी है। खेती में पहला सोच अने फिर काम, यो तरीको ज़्यादा फायदेमंद रहे। इकी देखभाल में टेम टेम पे पौधा की कटाई छटाई, खाद पानी की जरूरत अने बीमारी कीड़ा पे नजर रखनी जरूरी है। भले ही ड्रैगन फ्रूट दूसरी परंपरागत फसल उनसे अलग है, पर किसान अगर सही जानकारी ले के काम करे तो नई फसल को रास्तो बनी सकते है। आजकल कृषि विभाग, कृषि वैज्ञानिक अने अनुभवी किसान भाई उनसे जानकारी मिल सकती है, इन जानकारी उनको फायदो उठानो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि किसान भाई के बिना जानकारी के पूरी जमीन में एकदम से नई फसल नहीं लगानी चाहिए। पहला थोड़ी जमीन में प्रयोग करके देखो फसल कैसी चली रही है, खर्च कितरो आ रही है, फल की गुणवत्ता कैसी है अने बाजार में भाव कैसो कहीं मिलेगा, ये सब देखवा का बाद आगे बढ़नो ज्यादा समझदारी को काम है। खेती में जोखिम कम करवा को यो तरीको बहुत ही ज्यादा काम को है। ड्रैगन फ्रूट खाली नई फसल को नाम नहीं है, यो किसान के यह बात समझाए है कि खेती में समय का साथ बदलाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर बदलाव आंख मुंदी के नहीं बल्कि जानकारी हिसाब अने बाजार की समझ का साथ करना चाहिए। तो भाई बहनों ड्रैगन फ्रूट की खेती का बारे में तुमने जानकारी सुनी, पर जमीनी स्तर पे एक किसान इन्हीं फसल के कैसे देखी रहो है, कैसे बोई रहो है, कैसे लगाई रहो है, इन्हीं सब की जानकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इका लिए हमारा साथ आज जुड़िया है प्रगतिशील किसान श्री विष्णु पाटीदार जी, जिनने अपना खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करी है। उनसे बात करांगा कि उनने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करवा में कई सोच रखी थी, शुरुआत में कई कई दिक्कत आई थी, खेती में कितरो खर्च आयो, देखभाल में किन बात उनको ध्यान रखनो पड़े, तो इन सब विषय पर अपन उनसे सब बात जानांगा। तो आओ सुना श्री विष्णु पाटीदार जी से हमारी हुई यह खास भेंट वार्ता।
1: नमस्कार सर, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए और ये भी बताइए कि आपने जो अभी खेती लगाई है वो क्या है और उसे कैसे आपने लगाया है।
2: नमस्कार सर, मैं विष्णु पाटीदार उज्जैन जिले का निवासी हूँ, ग्राम ताजपुर में मेरी खेती है और मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मैंने जो नई फसल लगाई है इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट
1: जी।
2: ड्रैगन फ्रूट मतलब ये विदेशी फसलों में आती है, भारत में इसका चलन नहीं था। ये एक नई फसल है जो भारत में नहीं पाई जाती थी
1: जी,
2: ये वियतनाम चीन अन्य देशों में होती है। इसको भारत में हाल ही में ये फसल आई है और इस कैक्टस प्रजाति की फसल है ये
1: जी।
2: इसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं
1: जी। तो सर जो पारंपरिक फसल की जगह ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने का विचार आपको कैसे आया?
2: देखिए ड्रैगन फ्रूट की बाजारों में कुछ कुछ दुकानों पे ये दिखा, ये नई यूनिक पीस दिखता था, जिज्ञासा हुई कि ये क्या चीज है, इसको कैसे उगाया जाता है, कैसे खाया जाता है, ये क्या काम करता है। इस विषय में हमने थोड़ी सी मीडिया से जानकारी ली, कुछ किसानों से बात की, कुछ भ्रमण किया
1: जी।
2: इसके बाद में इसका पूरा अध्ययन करने के बाद में रायपुर में जाके हमने इसका बागवानी देखी। रायपुर इसका अच्छा बड़ा क्षेत्र है
1: जी।
2: ड्रैगन का रायपुर से हमें और अधिक जानकारी मिली, वहां से जिज्ञासा बढ़ी। हमने फिर इसको हमारे यहाँ ट्रायल के तौर पर 50 पौधे लाए थे आज से 4 साल पहले
1: जी।
2: और 4 साल पहले 50 पौधे ला के हमने इसको बंजर जमीन में स्थापित किए
1: जी।
2: हमें उस बंजर जमीन से रिजल्ट निकालना था कि ये बंजर में अगर हो सकती है तो ये खेतों में भी हो सकती है
1: जी।
2: और उस 50 पौधे ने हमें रिजल्ट दिया, अच्छा रिस्पांस मिला, ग्रोथ भी अच्छा रहा, क्लाइमेट सूटेबल रहा। इसके बाद हमने इसकी और जानकारी लेके इसके विधि विधान से हमने खेत में इसको लगाया
1: जी। तो सर लगभग कितने बीघा के आसपास आपने फसल लगाई है?
2: ये सर अभी वर्तमान में हमारे पास 7 से 8 बीघे के बीच का फसल लगा रखी है हमने
1: जी।
2: और आने वाले समय में इसको कुछ और बढ़ावा भी मिलेगा
1: जी। तो सर इसके साथ आप पौधों से पौधों की दूरी वगैरह के बारे में भी कुछ जानकारी आप बताइए।
2: पौधों से पौधों की दूरी में क्या, पहले हमने खेत को समतल अच्छी हकाई करके प्लेन पाटा दिया
1: जी।
2: उसके बाद में इसको 4x2 का बेड बनते हैं, 4 फीट जमीन से चौड़ा
1: जी
2: उठाया और 2 फीट ऊंचा। बेड के ऊपर सीमेंट के पोल लगाए, पोल सीमेंट के मजबूत वाले पोल लिए, उसके बाद उसके ऊपर सर्कल लगाई। इसकी दूरी से दूरी, पोल से पोल की दूरी है 7 फीट
1: जी
2: और कतार से कतार की दूरी है 12 फीट।
1: इस खेती को शुरू करने से पहले आपको किस तरह की तैयारी और प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कहाँ से मिला, क्या आपकी तैयारी रही थी?
2: मार्गदर्शन तो हमें कई किसानों से भी लिया हमने, कुछ जगह देखने के बाद भी, कुछ मल्टीमीडिया से भी मंगवाए मार्गदर्शन, सूचना के माध्यम से इसमें हम आगे बढ़ते गए। तैयारी की बात की जाए तो इसमें सब पहले गोबरी खाद जमीन के अंदर डालना पड़ता है, उसके बाद में दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है कीड़े मारने की, तो बेड बनाने पड़ते हैं जमीन से ऊपर, पोल लगाने पड़ते हैं। उसके बाद एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, 4 पौधे लगाने के पश्चात इस पर ड्रिप सिस्टम सेट करना पड़ता है।
1: तो सर इस खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु की जरूरत होती है?
2: इसमें मिट्टी काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी सभी मिट्टियों में होती है। इसकी एक विशेषता है कि यह गर्म और मीडियम ठंडी जगहों पे भी हो सकता है,
1: मतलब
2: मालवा के लिए अनुकूल है
1: जी। पौधों की रोपाई किस समय करना बेहतर रहता है और पौधों के बीच जो दूरी का बता रहे थे, तो अगर वो कम हुई तो क्या उसका असर हो सकता है?
2: पौधों की रोपाई 2 समय में होती है, फरवरी में लगाया जाता है इसको और जून में लगाया जाता है। और पौधों से पौधों की दूरी जो है आपके हिसाब से दो तरीके से इसकी खेती होती है
1: जी।
2: एक ट्रेलिस मेथड पे, एक पोल मेथड पे। ट्रेलिस मेथड पे 2x2 पे पौधे लगते हैं, 1 बीघे में करीब 800 से 1100 पौधे लगा सकते हैं आप, और पोल सिस्टम पे पौधे कम हो जाते हैं।
1: तो सर इसका असर उत्पादन पे पड़ता है?
2: इसका असर उत्पादन पे नहीं पड़ता है
1: जी।
2: ट्रेलिस सिस्टम में उत्पादन अधिक आता है, पौधे अधिक संख्या में लगते हैं, और पोल सिस्टम में का उत्पादन थोड़ा सा कम आता है, पर सुविधाएं ज्यादा रहती है।
1: सिंचाई और खाद उर्वरक प्रबंधन किस तरह आप करते हैं?
2: सिंचाई के लिए तो ड्रिप इसका उत्तम साधन है
1: जी।
2: खाद के लिए लिक्विड खाद चलता है, गोबरी खाद चलता है, और आप इसमें गुड़ाई के समय ऊपर से भी डाल सकते हैं
1: जी
2: फर्टिलाइजर।
1: तो सर इसमें कोई ऐसा प्रमुख रोग और कीट होते हैं जिनसे बचाव के लिए आप उसमें क्या करते हैं?
2: जी हाँ, ये सबसे मेन चीज है। इसमें कीट नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ती है। इसमें 3-2 बीमारियां आती है, एक सनबर्न की
1: जी।
2: जो जो कि 40 डिग्री टेम्परेचर से अधिक जब तापमान जाता है तो सूर्य की किरणें इसको डैमेज करती है, इसका पानी सोख लेती है, तो उसके लिए कुछ सावधानियां रखना पड़ती है। या तो आप नेट सेट लगाइए के ऊपर केविलिंग पाउडर से कोटेट कीजिए
1: जी।
2: और इसमें एक बीमारी आती है फंगिसाइड, फंगस, जो फंगिसाइड दवाइयों से उसको कवर किया जा सकता है, जैविक कीजिए या फिर आप रासायनिक कीजिए।
1: सर पौधे लगाने के बाद फल कितने समय में आते हैं और 1 साल में कितनी बार उत्पादन मिलता है?
2: पौधे खेत में लगाने के बाद इसमें 15 महीने के बाद में फल आना स्टार्ट होते हैं, 15 महीने के बाद स्टार्ट होते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाली फसल है। और दूसरी बात, इसमें फल 5 या 6 बार आ सकते हैं 1 साल में
1: जी।
2: और इसका समय रहता है बारिश में, जब जब पानी गिरेगा तब तब इसमें फूल आ सकते हैं। जी
1: तो सर इसके साथ आपने कोई पारंपरिक खेती भी लगाई है?
2: पारंपरिक खेती तो हम अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं
1: जी।
2: इंटरक्रॉपिंग की बात की जाए तो बीच के स्पेस में इसमें एक या दो साल तक इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है
1: जी।
2: ड्रैगन के अलावा इसमें बीच में छोटी फसलें जो एक या दो फीट की होती है
1: जी।
2: जो फंगस ना फैलाए उस टाइप की फसलें इसमें बीच में स्पेस में की जा सकती है।
1: तो सर आपने कौन सी फसलें लगाई हैं इसमें?
2: इसमें मैंने सर प्याज भी लगाए हैं, मैंने हल्दी लगाई है
1: जी। आपके अनुभव से ड्रैगन फ्रूट की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में कितनी लाभकारी साबित हुई है?
2: पारंपरिक फसलों की बात की जाए तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं किसान
1: जी।
2: एक लिमिट फिक्स रहती है, उसमें कोई ज्यादा इनकम नहीं होती है। और ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है इसकी लिमिट थोड़ी अधिक है, खर्च भी अधिक है, बट ये उत्पादन अधिक देती है, रेट अच्छे मिल जाते हैं, तो इससे दो गुना चार गुना पारंपरिक खेती से अधिक उत्पादन आपकी कमाई हो सकती है
1: जी। सर एक बीघा में अगर कोई ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है किसान तो उसको लगभग कितना खर्च आता है और उत्पादन कितना प्राप्त हो सकता है?
2: अगर एक बीघा में इसकी खेती की जाए तो करीब करीब 500 पोल के करीब अगर पोल सिस्टम से लगाता है तो 500 पोल एक बीघे में लगते हैं। एक बीघे में 500 पोल पे चार पौधे, एक पोल पे चार पौधे लगाए जाते हैं
1: जी।
2: इसकी खेती 3 लाख रुपए से लगा के 3.5 लाख रुपए बीघे का इसका खर्च है। कमाई की बात की जाए तो यह एक साल फसलें कम देता है प्रथम वर्ष, उसके पश्चात या दूसरे साल से जब फसल देना स्टार्ट होता है परिपक्व होने के बाद में तो 10 कुंटल से 15 कुंटल प्रति बीघा फसल दे सकता है।
1: बाजार में ड्रैगन फ्रूट की मांग और कीमत को आप किस तरह देखते हैं?
2: बाजार में ड्रैगन फ्रूट की मांग तो है, अधिक जानकारी नहीं है जनता को, इसकी जानकारी की आवश्यकता है, बहुत गुणकारी चीज है। और मांग अगर बढ़ेगी, माल बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगी। मैं किसानों से चाहूंगा कहना कि इसकी खेती की जाए, इसकी खेती बाजार में लाई जाए, इसके अनेक फायदे हैं। अगर बाजार में रहेगी तो जनता इसको खरीदेगी, खाएगी, उसका लाभ लेगी
1: जी। उपज आने के बाद आप अपनी उपज को कहाँ बेचेंगे? कोई मंडी या फिर कोई व्यापारी या सीधे ग्राहक तक आप कैसे पहुंचाएंगे उसको?
2: इसके तीन तरीके हैं, आप खुद भी बेच सकते हैं, मार्केट भी लगा सकते हैं या व्यापारियों को भी दे सकते हैं। इसकी मंडी अगर देखी जाए तो ज्यादातर मेट्रो सिटियों में इसकी मंडियां अच्छे रेट से मंडियां चलती है इसकी
1: जी। तो अपने आसपास कोई मंडी ऐसी हो?
2: जी हाँ, इंदौर में हमने दिया है, अच्छे रेट मिले हैं
1: जी।
2: और आने वाले समय जब हमारे पास माल बढ़ेगा तो हम इसको जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे भेजेंगे।
1: ड्रैगन फ्रूट की खेती में आपको सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी और उसका आपने समाधान कैसे निकाला?
2: ड्रैगन फ्रूट की खेती में सबसे बड़ी चुनौती लगी किसान के पास पैसा नहीं रहता है, पूरा खर्च ऑल ओवर खर्च महंगा रहता है। दूसरी चुनौती यह रहती है कि इसको कीट से भी बचाना है, सनबर्न से भी बचाना है
1: जी।
2: और फंगस से भी बचाना है।
1: आने वाले समय में आप अपनी ड्रैगन फ्रूट की खेती को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं?
2: आने वाले समय में हम इस ड्रैगन फ्रूट की खेती को और विस्तार देना चाहते हैं क्योंकि हमें इसमें कुछ लाभ दिख रहा है। यह फसल आने वाले समय में भारत में बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, प्रतिरोधक क्षमता अधिक है इस फल में, बीमारी से लड़ने में और ब्लड बढ़ाने में अहम भूमिका रहती है। इसका चलन भारत में बढ़ने वाला है, किसान को इसकी खेती बढ़ाना चाहिए
1: जी। सर ड्रैगन फ्रूट के साथ आप कोई नई खेती भी कर रहे हैं या कोई नया ट्रायल आप कर रहे हैं?
2: जी हाँ, ड्रैगन फ्रूट के साथ एक नया ट्रायल चल रहा है हमारा, फैशन फ्रूट, जो कि 2 साल में इसका फल स्टार्ट होता है और फूल आने के 90 दिन में इसको समय लेता है पकने में।
1: अंत में आप आकाशवाणी और उज्जैन के माध्यम से उन किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो खेती में नए प्रयोग और नवाचार करना चाहते हैं?
2: मैं आकाशवाणी के माध्यम से उन किसानों को कहना चाहता हूँ कि पारंपरिक खेती को थोड़ा सा साइड में करके कुछ हिस्से में कुछ नवाचार करना चाहिए, कुछ नई फसलें लाना चाहिए, इससे आपका विकास होगा, नई चीज रहेगी, अधिक उत्पादन आएगा, अधिक पैसा आएगा, इससे आपकी कुछ कुछ समस्याएं भी दूर होगी और किसान मजबूत होगा। मैं चाहता हूं कि अनेक किसान इस चीज को लगाएं और अन्य चीजें भी हैं, अन्य फसलें भी हैं, उनका भी प्रयोग करें।
1: सर आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: तो भाई बहनों, अभी तुमने सुनी हमारा प्रगतिशील किसान श्री विष्णु पाटीदार से, जिसे हमारी हुई यह खास बातचीत। अब देखो, यू तो खेती में एक नयो नवाचार है, अब जैसे किसान की जिंदगी में भी बहुत सारे नवाचार की जरूरत रहे। अब मान लो एक किसान खेत में हर साल पानी की दिक्कत रहे तो पानी भरने में समस्या रहे ओके। अब वो हर बार ज्यादा पानी मांगे पर फसल को जब फायदो उतरो नहीं मिल सकते ओके भैया, क्योंकि पानी कम है तो फसल में ज्यादा पानी वो दे नहीं सकते है। फिर उन किसान भाई ने कृषि विभाग से जानकारी ली अने खेत में ड्रिप सिंचाई लगाई। अब पानी सीधो पौधा की जड़ तक पहुंचवा लागो अने पानी की बचत भी होने लगी। इससे किसान को काम भी हल्को हुई गयो अने फसल की देखभाल भी बहुत बेहतर हुई गई। ये भले ही बात तुम्हारे सुनने में बड़ी नहीं लागी रही होगी पर किसान का जीवन में ये बदलाव बहुत ज्यादा बड़ो है। इन्हीं तरह आज किसान भाई मौसम की जानकारी मोबाइल से देख ही सकता है। फसल में भैया कहीं उनके बारिश की कब जरूरत है, तापमान कैसे रहेगा, हवा तेज चलवा की संभावना कब है, इन्हीं सब की जानकारी किसान खेत में काम करते करते ही देख ही ले। और इन्हीं जानकारी से किसान जो है खेती को काम आगे पीछे भी कर सकते है। जब बारिश हवा वाली हो तो सिंचाई रोक सकता है और जब मौसम साफ हो तो जरूरी काम कर सकता है। इतना टेम पानी अने समय दोई की बचत हुई और दोई को सही इस्तेमाल हुई है। मिट्टी की जांच भी खेती में नवाचार को एक जरूरी हिस्सा बनी गई है। पहला घना किसान अंदाज से खाद डालता था, अब मिट्टी की जांच करवाई के पतो कर सकता हो कि खेत में कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कहाँ खाद चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। एक ऐसे हिसाब खाद को तो लगेगा, खर्च भी कम होएगा अने मिट्टी की सेहत भी बची रहेगा, यू भी एक फायदा हो जाए। खेती में मशीनरी को उपयोग भी बढ़वा लगी हुई है। पहला एक काम में घना मना खूणो पूरा दन लगा देता था, अब मशीन ऊंच काम कम टाइम में करी दे। बोनी निंदाई कटाई अने दूसरे काम में जो फसल में जो मशीन हुन लगे है वे किसान की मेहनत के कम करी रही है। पर भाई बहन उन्हों हर किसान के हर मशीन खरीदनी जरूरी नहीं रहे। जिन्हें काम की जरूरत हुई है वह मशीन किराए पर ले सकता हो, तुम कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी सुविधा उनको उपयोग कर सकता हो। नवाचार को एक सुंदर उदाहरण यो भी है कि किसान अब खाली एक फसल पर निर्भर नहीं रहे। कोई किसान खेती का साथ डेयरी को काम भी कर रहे है, कोई बगीचा लगा रहे है, कोई मधुमक्खी को पालन कर रहे है, कोई सब्जी उत्पादन कर रहे है। इनमें से एक काम में नुकसान हो तो दूसरा काम किसान के संभाल सकता है। आमदनी बढ़ावा की सोच भी एक तरीका से नवाचार को ही उदाहरण है। तो भाई मैं उन्होंने नवाचार को मतलब पेला की खेती के गलत मानना नहीं है, अपना दादा परदादा का तजुर्बा हूं आज भी बहुत काम का है। नई तकनीक के पुराना अनुभव का साथ जोड़नो ही असली समझदारी है। जदे किसान नई जानकारी के अपना अनुभव का साथ मिलाएगा तो खेती और भी ज्यादा मजबूत बनी जाएगा। अब देखो इन्हीं सब बात का बीच अपने यू तो भूली गया कि अपने आज निमाड़ी गीत हूं भी सुनना है। तो आओ सुना एक प्यारो सो सुंदर गीत जिका बात अपने अपनी बात करांगा।

तो भाई बहनों, नवाचार को फायदो तभी पूरा होए जब खेत की मेहनत को असर किसान की आमदनी में भी दिखाई दे। तो अब बात करना अपने खेती में आमदनी की। तो किसान खेती करे है तो उसकी मेहनत को सबसे बड़ो सवाल आमदनी से जुड़े हुए। खेत में महीनों तक मेहनत करी, बीज डालियो, खाद पानी दियो, फसल संभाली, अने कटाई करी, इना सबका बाद किसान के फसल को सही भाव मिले जदे ही उसकी मेहनत पूरी मानी जाए है, अने उसकी मेहनत को पूरा फायदो मिले है। इका वजह से खेती में खाली पैदावार बढ़ावा की बात नहीं बल्कि आमदनी बढ़ावा की बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो किसान ने एक बीघा में फसल ली, अगर फसल अच्छी हुई पर बाजार में भाव मन मुताबिक नहीं मिलियो तो आमदनी उम्मीद जैसी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ कोई किसान थोड़ा उत्पादन करे है, फसल की गुणवत्ता अच्छी रहे है और सही टाइम पे उसे बाजार में बेची दे और सरकारी योजना को लाभ भी ले तो उसकी कमाई बेहतर हो सकती है। खेती किसानी में आमदनी बढ़ावा के लिए फसल में विविधता रखनी भी एक तरीको हो सकता है। खाली एक फसल पे निर्भर नहीं रहनो, उसकी बजाय तुम अपनी जमीन में अपना पानी का हिसाब से दूसरी फसल, सब्जी, फल अने पशुपालन के भी जोड़ी सकता हो। जैसे कोई किसान खरीफ में सोयाबीन ले अने रबी में चना या गेहूं, तो खेत की मेड़ पे तुम सब्जी या फलदार पौधा रखी सकता हो। अगर सुविधा हो तो डेयरी या दूसरा कृषि आधारित काम भी तुम जोड़ी सकता हो। घनी बार किसान की आमदनी इकालिए कम हो जाए क्योंकि फसल तैयार हुआ का बाद तुरंत बेची दे। अगर भंडारण करने की तुम्हारा कन सुविधा हो तो बाजार की स्थिति समझ में अगर तुम्हारे आई जाए तो किसान सही टाइम पे फसल संभाल के रखी सकते है और सही टाइम आने पर बेची भी सकते है। अगर इनमें तुम यह चीज भी ध्यान रखो कि इनमें बाजार भाव, भंडारण खर्च अने जोखिम की जानकारी भी जरूरी है। खाली भाव बढ़वा की आस में फसल रोकी के राखनो समझदारी को फैसलो नहीं रहे, कई बार तुम्हारे नुकसान भी हो सकते है। किसान अकेलो काम करे तो घनी बार खरीद अने बिक्री में दिक्कत भी आई है, पर जदि किसान मिली के समूह किसान उत्पादक संगठन यानी FPO का साथे जुड़े तो बीज अने दूसरी सामग्री सामूहिक रूप से खरीदी सके है अने फसल की बिक्री भी एक साथ करी सकता है। एक साथ ज्यादा मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की फसल हो तो बाजार तक पहुंच भी बनाने में भी आसान रहे और फसल का भाव भी अच्छा मिलेगा। अब इको उदाहरण सीधो सो है कि मान लो एक गांव में 10 किसान अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब्जी पैदा करी रहे हैं। सबकी पैकिंग अलग है, बिक्री अलग है, भाव अलग है, पर ये सब अगर मिली के एक सब्जी तैयार करे, छटाई पैकिंग ठीक करे अने एक साथ बाजार में भेजे तो काम व्यवस्थित हो सकता है। ग्राहक के एक जैसी गुणवत्ता की फसल भी मिलेगा, किसान होने भी बाजार पहुंचवा में आसानी मिलेगा, सुविधा मिलेगा और भाव भी अच्छा मिलेगा। खेती में खर्च कम करना भी आमदनी बढ़ाने को एक हिस्सा है। बीज, खाद, दवाई, पानी, मजदूरी अने मशीनरी, हर चीज को हिसाब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान के लिखित देखना चाहिए कि एक फसल में कुल खर्च कितनो आयो, कहाँ की जगह उन्होंने फिजूल खर्च करियो, कहाँ की जगह उन्होंने ज्यादा पैसा लगा दिया, कहाँ की जगह उन्होंने कम पैसा लगाया, ये सब जानकारी होके बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। भाई मैं उन्होंने खेती में आमदनी बढ़ाने का मतलब खाली ज्यादा फसल पैदा करना नहीं है, सही फसल चुननी, खर्च कम करना, गुणवत्ता अच्छी रखनी, सही बाजार तक पहुंचना अने खेती का साथ दूसरा काम जोड़ना, ये सब बात हूं मिली के किसान की आमदनी के मजबूत बनाई है। अब आमदनी की बात हुई गई, किसान खेती की बात हुई गई, ड्रैगन फ्रूट की बात हुई गई, अब बचा है अपना मंडी भाव। पर मंडी भाव जानने से पहले क्यों नहीं अपन एक गीत और सुनना, जिसका बाद अपने मंडी भाव भी जानना। तो अब सुना एक प्यारो सो गीत।

अब आओ अपना कार्यक्रम में एक नजर अपना मंडी भाव के भी देखी ला के भैया कई भाव चल रहा है मंडी में। तो शुरुआत करा अपने सबसे पहला गांव से, तो लोकमान गांव का भाव रहा 2071 से लगाई के 3150 का। उसके बाद दूसरी फसल की बात करना तो चना में देसी चना को भाव रहा आज 5901 को। डालर चना को भाव रहा आज 3350 से लगाई के 7951 तक। सोयाबीन की बात करा तो सोयाबीन को भाव रहा आज 2700 से लगाई के 6085 तक। दूसरी फसल का आड़ी देखा तो बटला को भाव रहा 3201, रायडा को रियो 6850, सरसों को रियो 7050 से लगाई के 7601, मूंग को रियो 7600, तुअर 4300, मेथी दाना 5240, तिल्ली को भाव रियो 10491 से लगाई के 11001 तक। अब दूसरी बात यह है कि भैया जिनी चीज में तुम्हारी नजर जई रही है उसको भी भाव तुम्हारे बताऊंगा जरूर। तो आलू को भाव रियो 400 से लगाई के 800 तक, प्याज को रियो 700 से लगाई के 1200 तक, लहसुन को भाव रियो आज 9000 से लगाई के 14000 तक। अब देखो घड़ी ने तो कर दियो इशारो भैया के टेम हुई गयो है तुम्हारो, अब तो तुम्हारे जानो पड़ेगो। आज अपन ने बहुत सारी बात कर ली, बहुत कहीं जान लियो, सब अच्छी अच्छी बात करी, ड्रैगन फ्रूट का बारे में बात करी, खेती का बारे में बात करी, नवाचार का बारे में बात करी। अब इसके साथ एक प्यारी सी बात और सुनता जाओ कि आलोचना हुन के दिल पे नहीं लेनी, दिल से लो, क्योंकि यही वह आखिरी उम्मीद है जो तुम्हारे कहीं आगे तक ले जा सकती है। एका साथ ही तुम्हारा भाई कुलदीप शर्मा के तुम विदा दो, स्वच्छता बने के रखो, राम राम, जय श्री महाकाल, अने शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटीरी बात, मालवी समाचार, निमाड़ी लोकगीत। शाम के 8 बजने को है। अब आप भोपाल केंद्र से विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। आज के कार्यक्रम का विषय है व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग।

0: लोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं, और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं, और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में जीएसटी एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए जीएसटी परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए आईबीसी ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया, और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा, और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
0: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले, और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है, और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में यह राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ

0: उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस। इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में, और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची, या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज अ मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं, और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
2: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए, और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे जैसा आपने कहा, IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया गया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे लिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सके हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है, इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन, न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
2: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही BPRD इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
0: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जन विश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में के वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे CA से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों को आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या GST ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद

0: एक सिंगल वेबसाइट इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
0: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म।
1: जी,
0: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। चार श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ है।
0: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी, क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था। दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो चार कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और चौथा जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन चारों कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था और उस फोरम ने भी इन चार कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन चार कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
1: ये जो चार लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं, प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए, 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट होते थे और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल

0: प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स में जाना पड़ता था और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए। और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए, एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी हैं क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है। और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था, गुड्स या सर्विसेस का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं। हम चूंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए

0: इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवाइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ
1: बिल्कुल।
0: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेवल में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कॉपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है जी।
1: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते हैं तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना, ये बहुत बड़ा बदलाव था
1: जी।
2: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221.39 रुपया है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज 299 रुपीज क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूं उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूं, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
1: आए। और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
2: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
1: जी,
2: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था,
1: यही था,
2: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या, अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बड़ा है,
1: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय था व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
5: नमस्कार। FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप इसे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। शाम के 8:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत की एक फिल्म खामोशी से। हेमंत दा का गंभीर और सम्मोहन भरी आवाज जब किसी को पुकारती है तो लगता है समंदर की लहरें भी सांस थमकर सुन रही हो। फिल्म खामोशी का यह रूहानी नगमा आपके लिए पेश है, आनंद लीजिए।

और आज के सुरेले कारवा का अंतिम गीत जो उज्जैन की इस ढलती शाम को और भी खुशनुमा बना देगा। राजेश खन्ना साहब के अंदाज और किशोरदा की मस्ती भरी आवाज, आनंद लीजिए इस सदाबहार तराने को।

तो श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ वक्त हो चला है आज के हमारे इस फिल्म संगीत कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। उम्मीद है पुराने गीतों का यह गुलदस्ता आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ और नए पुराने सुरीले तरानों के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz। अपने दोस्त विनय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी चार कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
4: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
5: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडो ओर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
6: मैं समझता हूं कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहां पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
4: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
7: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चिनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया गंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
9: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपये पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में तलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
11: Rabi season ki MSP badhane se,
12: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
11: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
10: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes.
13: ITMS mein objective hai.
14: The objective of intelligent traffic management system is to improve the functioning of the 1529 traffic signals which currently operate on fixed timings. With ITMS, traffic signals can dynamically adjust their timings based on traffic flow. If there is more traffic or a greater buildup on one side, the red light duration can be reduced, while the side with less traffic can be given a longer red light duration. This will be possible through the intelligent traffic management system. ITMS is particularly important for a mega city like Delhi. It will be implemented in 3 phases.
13: Isko 3 phases mein implement karenge.
10: Mr. Vaishnav said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for Rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel-based capacity by 2035. The centre has approved procurement worth 5,547.99 crore rupees at MSP under the price support scheme for major pulses and oilseeds in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for the Kharif marketing season 2026-27. The Agriculture Ministry said that the decision has been taken to protect farmers from a fall in market prices and ensure remunerative returns for their produce. This is Akashwani giving you the news.
15: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
10: Welcome back. You're with us on the news at 9. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. Home Minister Amit Shah today said five Pakistani nationals have been arrested from an Iranian boat during a joint operation conducted by Gujarat Anti-Terrorism Squad, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies. During the operation, 526 kilograms of methamphetamine and heroin were seized from the boat, which was within India's exclusive economic zone. In a social media post, Mr. Shah highlighted that the Modi government is determined to shield its youth from the scourge of drugs. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah has said that Punjab will be made drug-free by the end of 2029. Addressing a Nasha Mukt Punjab rally in Jalandhar today, Mr. Shah said the BJP would contest the upcoming assembly elections in Punjab on the issue of making the state free from the menace of drugs. Mr. Shah said the government has addressed terrorism in Jammu and Kashmir and ended extremism in the northeast, adding that the focus will now be on making Punjab drug-free.
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा
16: पंजाब कैन नॉट ट्रूली डेवलप अंटिल इट्स यूथ आर फ्री फ्रॉम ड्रग्स Drug abuse is destroying our future generations. Only the Bharatiya Janata Party, under the leadership of Narendra Modi, can create a strong system to ensure that drugs do not reach the youth of Punjab. No one else can do it.
2: Bharatiya Janata Party kar sakti hai, koi aur nahi kar sakta.
10: The BJP has claimed that the India bloc is facing internal differences after several leaders skipped the alliance's meeting held in New Delhi today. Addressing a press conference in New Delhi, senior party leader and Union Minister Shivraj Singh Chauhan said leaders of several parties, including the DMK, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party, did not attend the meeting. He also claimed that leaders of the India bloc and the Congress were not willing to accept Rahul Gandhi as their leader.
7: Lagatar Congress apni galtiyon par
17: instead of apologizing for its repeated mistakes, Congress continues to spread misinformation, make false claims and level fabricated allegations. Today there was a meeting of the India Alliance, but the alliance fell apart even before the meeting could take place. And the truth is that the India Alliance is not ready to accept Rahul Gandhi as its leader.
7: Sach baat to ye hai ki Indi Gadbandhan Rahul ko neta manne ke liye taiyar nahi.
10: The partners of India bloc today met in New Delhi to chalk out their strategies on the Special Intensive Revision SIR exercise and issues related to the Election Commission. This is Akashwani. You are listening to the news at 9.
15: stay in the know wherever you are. Follow us on X and Threads at AIR News Alerts.
10: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through Self-Reliant India. Self-Reliant India is an initiative aimed at promoting domestic manufacturing, reducing import dependence and making India Atmanirbhar. The initiative was launched in 2020 by Prime Minister Narendra Modi to make the country self-reliant in every sector. Initiatives such as production-linked incentives, agriculture infrastructure fund, Make in India and support for micro, small and medium enterprises are intended to increase India's productive capacity. Addressing the nation on the 79th Independence Day, Prime Minister Modi declared self-reliance as the foundation of a developed India.
5: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है और मेरे प्यारे देशवासियों विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है.
15: Talking to Akashwani News, retired Commodore Shrikant Kesnur said that India has made giant strides in the field of defense, evolving from a major importer of defense equipment to an emerging exporter.
18: In the field of self-reliance in defense, we have made giant strides from importing equipment. We have now skyrocketing exports. Last year was almost 40,000 crore rupees. And I think specific platforms where we have done amazingly well, BrahMos missiles, surface-to-air SAM missiles, and above all, warships, including the aircraft carrier Vikrant. I think we are going great guns in Atmanirbharta in defense with huge reliance on indigenization, and that has really got a boost over the last decade or so.
15: Self-Reliant India is a long-term vision of building a strong, more capable and resilient economy.

0: to realize the vision of Viksit Bharat by 2047. With Dipendra Kumar, Anuja Kumar for Akashwani News, Delhi.
1: The government has advised Indian nationals against voluntarily giving up their Indian citizenship to join the Russian armed forces. In a statement, the Ministry of External Affairs advised Indian nationals travelling to Russia to exercise caution when pursuing job opportunities there. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals today. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 2 more bronze medals to the tally, with Priya Gangas and Kapil Pokharia finishing on the podium today. Later in the day, wrestler Sunil Kumar won bronze in the men's 87-kilogram Greco-Roman event, beating the Philippines' Callum Johnston-Roberts 9-0. In women's hockey, India defeated South Korea 2-0 this evening to reach the final. Ishika Chaudhary and captain Salima Tete scored for India. In squash, Indian men's and women's teams advanced to the semi-finals, assuring 2 more medals. The top-seeded and defending champion men's team beat Kuwait 2-0. In men's cricket, chasing a target of 406 runs set by West Indies, India were 307 for 1 in 30.2 overs in the second ODI of the 3-match series in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupee procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5,548 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की भी मंजूरी दी गई है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दोतरफा ताउन का जायजा लिया। गुजरात ATS, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ईरानी कश्ती से 526 किलोग्राम मुनशियात भी जब्त की गई। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के तमगे जीते। भारत के तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 60 हो गई है, जिनमें सोने के 10, चांदी के 21 और कांसे के 29 तमगे शामिल हैं। खवातीन हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तिलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपए फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 415 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।

0: जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी की तमाम फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा मरकजी बजट 2018-19 में किए गए उस ऐलान के ऐन मुताबिक है, जिसके तहत MSP को पैदावार की मुल्क भर की औसत लागत से कम 1.5 गुना मुकर्र करने का फैसला किया गया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निजाम ITMS प्रोजेक्ट के निफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसमें टैक्स भी शामिल है।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: दिल्ली में फिलहाल तकरीबन 71 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। ITMS का मकसद सड़कों की मौजूदा गुंजाइश का बेहतर इस्तेमाल करना है। इस निजाम के जरिए ट्रैफिक इंतजामिया को ट्रैफिक की सूरत हाल के मुताबिक मुतहर्रिक अंदाज में बरवक्त इकदामात करने में मदद मिलेगी। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।
1: 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीनफील्ड लाइंस को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइंस को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: मरकज ने कीमत इमदादी स्कीम PSS के तहत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम से कम इमदादी कीमत MSP पर 5,547.99 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजारत ज़राअत ने कहा है कि यह फैसला किसानों को मार्केट की कीमतों में कमी से तहफ्फुज़ फराहम करने और उनकी पैदावार के लिए मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वजीर आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर के किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। वजीर आज़म ने कहा कि इस फैसले से मुल्क भर के लाखों किसानों को अपनी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत के हुसूल को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले से मुतालिक काबीना के फैसले का भी खैर मकदम किया। वजीर आज़म मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। UPSC के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद मनाने के लिए गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर से साल भर जारी रहने वाली सदसाला तकरीबात का आगाज किया गया था, जिसके इख्तिताम पर कल इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। UPSC का क़याम साल 1926 में अमल में आया था। वजीर आज़म मोदी इस प्रोग्राम में यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। नीज एक किताब का इजरा भी करेंगे, जिसका उन्वान है 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ये प्रोग्राम 2 रोजा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका इनेकाद UPSC की जानिब से आज और कल किया जा रहा है। वजीर आज़म मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वजीर आज़म मोदी ने आज शाम अमरीकी सर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आज़म ने कहा कि उन्होंने आलमी अमन और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी कोशिशों समेत इलाकाई और बैन अक्वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आज़म मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित

0: भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है।
1: आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी पहल है जिसका मकसद अंदरूनी मुल्क मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना, बरामदात पर इन्हिसार को कम करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पहल का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में किया था ताकि मुल्क को हर शोबे में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पैदावार से मुंसलिक तरगीबात, जरई बुनियादी ढांचे से मुतालिक फंड, मेक इन इंडिया और बहुत छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों के लिए तआवुन जैसे इकदामात का मकसद भारत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। 79वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क से खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद इन्हेंसारी को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी से गुफ्तगू में रिटायर्ड कॉमोडोर श्रीकांत केसनूर ने बताया कि भारत ने दिफा के शोबे में बड़ी पेशरफ्त की है और वो दिफाई साजो सामान के बड़े दरामदकार से एक उभरते हुए बरामदकार मुल्क के तौर पर उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की खातिर मईशत को मजबूत, ज्यादा से ज्यादा बासलाहियत और मुस्तहकम बनाने का एक तवील मुद्दती विजन है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते IGC और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कश्ती से 526 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और हीरोइन जब्त की गई। ये कश्ती भारत के खसूसी इकतसादी जोन के अंदर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उजागर किया कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन की मिसाल कायम करने वाली 16 रोजा तवील कार्रवाई के दौरान एक ईरानी कश्ती भी कब्जे में ली गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2029 के आखिर तक पंजाब को मुनशियात से पाक कर दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और शिमाल मशरकी रियासतों में इंतहा पसंदी का खात्मा किया है। अब हुकूमत की तवज्जो पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने पर मरकूज होगी।
3: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: पंजाब के शहीदों को, जिनमें शहीद भगत सिंह और उधम सिंह भी शामिल हैं, खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पंजाब कभी अपनी बहादुरी, ज़िराअत और खुशहाली के लिए मशहूर था लेकिन अब उसे मुनशियात के बढ़ते हुए मसले का सामना है। मरकजी वजीर दाखिला वजारत दाखिला ने कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी की हलाकत जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। मूसा को बडगाम जिले के खान साहिब पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ गुरवत कलां के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा के हलाकत के साथ ही लश्कर ए तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। आकाशवाणी के खबरों के शोबे NSD ने अंग्रेजी जबान में आरजी बुनियाद पर न्यूज एडिटर्स और न्यूज रीडर्स की खिदमात हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक अपनी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए www.newsonair.gov.in पर रुजू कर सकते हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के लिए आज का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा, क्योंकि आज भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम, मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने आज शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जुमे के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5,548 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम की मंजूरी दी है। काबीना ने दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम ने मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। गुजरात ATS, भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरक कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत उहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर जाए है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है। और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी, मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गांव के हिसाब से देखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है, यह एक एन्यूमरेशन एक प्रक्रिया है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
2: बिल्कुल,
4: क्यों नहीं करें हम?
2: कहा, और देखिए मैं भी दिल्ली का मतदाता हूं और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, चारों मतदाता हैं और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरफ से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
3: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
2: जी,
3: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे, फिर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूं, जब बलराज मदोप उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस पृष्ठ भूमिका में अगर हम बात करें जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकीपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
2: जी।
3: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने। यदि कभी भी तुझ भी मेरी पट भी मेरी, तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो

0: तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
1: बिल्कुल।
0: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है, उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्षी दल नहीं आए हैं। यानी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं, और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो, अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अक्षय जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECI नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बताऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है, उसका जो दाखला करने की जो उपाय है, तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले, जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है, फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला, तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया
1: जी।
2: दूसरी बात है राजनीति, इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा। ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों, ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है, वो जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व बनता है। ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है, जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपैंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं, कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं, और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे, और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके, नर्चर करके, रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है, बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला, उसमें 4-5 आम नागरिक, आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए, उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है, और ऐसे भी लेना चाहिए, बहुत नहीं कि ये उनका दायित्व है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं, वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं, जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना, या फिर उनके पूरे सेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को, और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
0: देखिये, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे, और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने मिलाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं, और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है, और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है, अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं।

0: इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए, अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है? तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम
1: जी।
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, न कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई। क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस, हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का एक कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए। मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोला, SIR नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था, उसमें भी करना की आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है या हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है। चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए। तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और एसआईआर में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है कि अभी इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये एसआईआर का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा। इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं, हम और एसआईआर के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया,
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी, शायद पिछले ही हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं,
2: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे, अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें एसआईआर में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है, और एसआईआर के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं तो आप डीओ के पास जा सकते हैं, सीओ के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है, अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका कैसे मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
0: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
2: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आग रहता है चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
1: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
0: नहीं, मैं समझता हूं कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूं उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी एफआईआर प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है? ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
1: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे एसआईआर और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी।
6: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे, उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया। लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
7: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानी पार्थी और प्रीतिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानी पार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबरी पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की तीनों टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
6: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था। नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का चौथा स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
8: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का तीसरा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।
6: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी। आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
9: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
6: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया, पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज जन्नाटे शॉट लगाया जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां अब 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य, तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
8: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से बार के स्प्लिट डिसीजन से हार गईं, वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
6: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों

0: में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वैश के सितारों की कहानी।
1: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वैश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी है। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा 6-6 की बराबरी पर, उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए। लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दो ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़ के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
1: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगजो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
0: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
1: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
0: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेंस टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधू 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर है। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
0: और अब बारी सिपक डाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश यमुनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल है। वही महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सिपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
0: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भांचने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
3: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्त ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। किनों में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
0: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
2: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय सिनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
1: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
4: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के दो बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी चार क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही।

है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में

0: 9:30 से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10:00 ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। वो कौन थी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर को। गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए राग रागेश्वरी में सितार वादन का। पेश कर रहे हैं पंडित गिरिराज।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आनंद ले रहे थे सितार वादन का पंडित गिरिराज से। राग था रागेश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
3: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
2: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for Rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel-based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including the ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. Home Minister Amit Shah today said five Pakistani nationals have been arrested from an Iranian boat during a joint operation conducted by Gujarat Anti-Terrorism Squad, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies. During the operation,